0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabala. Burga, burga. La virba la burga.
0: Milci, burga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी।
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो यही मिली आपको?
2: जी जी जी बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है।
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
2: राइट, बिल्कुल।
3: चलिए। अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड
2: पूजा
3: पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके। अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा।
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा। है ना
2: सर, मेरी बात
3: तो सुनिए। हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
2: मैं तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ुकू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ुकू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये जो आपने झूठ बोला है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए दैट आपका बाप सबसे अमीर इंसान है इन लाइक द एंटायर कॉलोनी, ये जब आपकी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा, हाउ आर यू गोना डील विद दैट? सोचा है कभी आपने इसके बारे में?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: बट इफ यू हैव अ कन्फेशन लाइक दिस और एनीथिंग एल्स, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू. और मेरे साथ अभी लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ.
2: यू नो इट्स लाइक व्हेन पीपल से थिंग्स लाइक दीज दैट मुझे लगता है कि यार मैं सही जगह पर हूँ. आई चोज द परफेक्ट करियर फॉर माई सेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट.
4: मुझे आप बहुत पसंद हो रोशी, पहले तो मैं ये बोलूंगी.
2: मुझे आप बहुत पसंद हो, सीरियसली. आप हर बार मेरे इंस्टा लाइव पे होते हो, मैं आपका नाम नहीं बता रही हूँ बट हर बार मेरे इंस्टा लाइव पे होते हो. आई एक्चुअली लुक एट योर page a lot and I think you're quite a diva yourself. Seriously, no kidding.
4: Thank you
2: for existing. But uske aage there is this one story jo aapne mujhe insta mein batayi thi. I thought that was hilarious. Ha to kya hua tha?
4: So Roshi, I went on a blind date aur bahut hi bekar scene ho gaya tha. To main actually main na bahut blind dates pe jaati hu. तो मैं गई और मैं मुझे जाते वक्त उसका नाम याद था लेकिन जैसे मैं पहुंची ना मैं उसका नाम भूल गई थी. तो हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो मेरा नाम ले रहा है प्रॉपरली और मैं उसको तू करके तुम करके आप करके सब करके बुला रही हूँ लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा. तो उसने मुझसे पूछा कि चलो कहीं चलते हैं, कैफे या फिर कहीं भी चलते हैं. तो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे नाम भी पता चल जाए इसका. तो मैं वो कॉफी शॉप्स नहीं होते जहाँ पे नाम लिखते हैं कप पे.
2: आई नो व्हिच वन यू आर टॉकिंग अबाउट. थैंक गॉड यू आर नॉट टेकिंग ब्रांड नेम्स. आई अप्रिशिएट दैट.
4: तो मैं उसको जान पूछ कर वहीं लेकर गई और जैसे ही उसने कॉफी ऑर्डर की एक तो मैंने बहुत मुश्किल से तू तुम मैं बहुत स्ट्रेच किया मैंने इसे. फिर उसके बाद जैसे ही उसकी कॉफी आई और मैंने उसका नाम देखा तब जाके मैंने उसका नाम लिया और थोड़ा अच्छा लगा.
2: बेब आई लव दिस आइडिया. मतलब कितनी इंजीनियस है तू. बंदे का नाम भूल गई तो कैफे जाते हैं जहाँ पे लोगों का नाम
4: लिख. और रोशी मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको अपने एम्प्लॉइज के बर्थडे तक याद रहते हैं, मुझे नाम याद नहीं था.
2: गोस टू शो बेब की वो ब्लाइंड डेट वाला बंदा कितना इंटरेस्टिंग था कि उसे देखते ही उसका नाम भूल गया. ये रोशिफिकेशन जो मैं करने वाली हूँ इज नॉट फॉर यू, इट्स फॉर द पुअर गाय जिसका तू नाम भूल गई. और अगर वो ये सुन रहा है ना, ही विल नो कि एक बंदी मुझे कैफे में लेके गई थी. This one is for you, my darling.
0: You've been roshified.
2: अगली बार अगर ऐसा हो ना, then you know the date's not working out. Pointless है उसे कॉफी ले जाना, कॉफी पिलाना. Just cut the date out short and just leave already. नहीं?
4: Okay.
2: अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही कुछ हुआ है ना, then I totally want to hear your story, Morning Glory. So hit me up on Insta या FB and whatever you do. कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात और सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: दिस इज समथिंग

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: प्यार में दिल पे मार दी गोली, ले ले मेरी जान। इट इज स्टिल ओके, लेकिन अगर प्यार में अंधापन हो जाए ना तो इंसान क्या गलतियां कर बैठता। आई कैन इवन बिगिन टू टेल यू, आज सारा दिन आई थॉट, मतलब सारी रात, दैट वी विल टॉक अबाउट आज के जागरण में कि आपने प्यार के अंधेपन में क्या क्या काम किए हैं। दो तीन एग्जांपल्स तो मैंने अपने दे दिए। देन दिवीना सेंट मी अ मैसेज ऑन द ग्राम एंड शी सेड, रोशी मैं प्यार में इस लेवल तक अंधी थी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें बोली कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं नहीं चाहता हमारे बीच में कुछ भी आए, प्रोटेक्शन भी, ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कुछ तीसरी एंटिटी, एंड आई डोंट लाइक इट। शी सेड, भाई मैं इतनी छोटी थी, आई वॉज 18, मुझे लगा कि ये तो सच कह रहा है, मे बी वी शुड हैव नथिंग बिटवीन अस, और ये हमारा सच्चा प्यार है जन्म जन्मांतर का, एंड आई वेंट अहेड विदाउट प्रोटेक्शन। उसके बाद जब गलती से गलती हो गई, दैट बॉयफ्रेंड सर तेरी प्रॉब्लम है, मैं तो यहाँ से कट रहा हूँ। And I'm feeling terrible about that, Divina, because मैं हमेशा यही कहती आई हूँ since time immemorial that no matter what happens, आपकी body is your problem, you have to take care of it, always use protection. लेकिन Divina जैसे प्यार में अंधी हुई थी, अगर आपने भी ऐसे ही बड़े अच्छे अनोखे काम किए हैं, why don't you hit me up and tell me all about it? मेरा नाम है Mirchi Roshi, today we're discussing your प्यार का अंधापन. And while you find me on the gram या Facebook, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो Mirchi, it's hot.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: रेडिट पर पता चला है नई ताज़ी खबर में कि यूएस में एक ऐसा इंसान है जो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना ओवर हर लॉन्ग अनएंडिंग स्किन केयर रूटीन. वो लिप्स पर फेस पर मास्क लगाकर रात भर घूमती है. दैट डज नॉट अलाउ हिम द चांस टू गेट नोटी विद हर. क्या आपके भी जीवन में ऐसी ही भसड़ है? अगर हाँ तो यू आर अ लकी पर्सन कि आपके जीवन में ऐसी ही भसड़ है. बट जो भी रिलेशनशिप की भसड़ है, हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. एंड व्हाइल यू डू दैट फॉर नाउ, मेरे साथ लाइन पर है रोहित. एंड रोहित इज सुपर शाय बिकॉज रोहित पहली बार मुझसे बात कर रहे हैं ना. रोहित, यू आर टॉकिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम ना.
3: यस रोशी.
2: ऑसम, दैट्स अ गुड थिंग. आप बहुत नर्वस साउंड करो. इतना नर्वस मत हो, ये इंटरव्यू नहीं है. और अगर इंटरव्यू होता तो आप इस इंटरव्यू में पास हो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. ये बताओ कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है.
3: रिसेंटली मेरी शादी हुई थी.
2: मैं
3: और मेरी वाइफ, थैंक यू सो मच. एंड मैं और मेरी वाइफ दोनों, वी आर वर्किंग इंडिविजुअल्स. और नॉर्मली स्पीकिंग जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, एवरीथिंग वाज ओके, राइट? वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, इवन इफ इट वाज जस्ट अ फ्यू आवर्स अ डे, फिर भी चल जाता था. बट बाद आस्ता आस्ता जैसे अब शादी हो गई है तो हम दोनों काम पे अपने बिजी हैं. मैं नाइट शिफ्ट में रहता हूँ, वो डे शिफ्ट में रहते हैं. तो इट हैज क्रिएटेड अ रिफ्ट, राइट? तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से उस चीज को ना कवर अप किया जा सके या कोप अप किया जा सके. वीकेंड्स आर देयर, बट वीकेंड्स में क्या होता है, जब आपने पूरा हफ्ता मतलब ना उनके पास खुद की मतलब काम समेटने के लिए टाइम है ना मेरे पास, तो वो काम समेटते हफ्ता निकल जाता है वीकेंड ना.
2: अच्छा, सो टेल मी समथिंग, आप लोगों की लाइफ में, एंड दिस इज थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन सेक्सुअल इंटीमेसी कॉम्प्रोमाइज हुई है शादी होने के बाद बिकॉज आपके शिफ्ट टाइम्स अलग है?
3: नहीं, ऐसा कोई इतना खास है नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीजें इतना कोई मेजर इशू हमारे लिए कभी रही भी नहीं है. वी आर मोर इनटू इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप टू बी ऑनेस्ट, जो कि इफेक्ट हो रहा है. क्योंकि होता क्या है कि इट इज इजियर टू ओपन अप फिजिकली देन इमोशनली, टू बी ऑनेस्ट.
2: आई एग्री.
3: इमोशंस जो है ना, मतलब आप बहुत रेयरली किसी के साथ इतनी जल्दी ओपन अप हो पाते हो. अच्छी चीज ये है कि वी स्टिल हैव यू नो दैट कनेक्ट, कि हम इजिली ओपन हो सकते हैं. बट स्टिल यू नो, जब आपको पता है ना कि आपने हफ्ता भर किसी से बात नहीं करी है, अपना ये चाहते ही नहीं हो कि आप उनको हफ्ते में एक बार बात होनी ढंग से, वो भी आप अपनी प्रॉब्लम से डिस्कस करते रहो. तो एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि एक होता ना, मतलब आप लेवल होता है कि मतलब कम्युनिकेशन का वो कम होता जाता है. हम दोनों में से कोई चाहेगा भी नहीं, हम दोनों को समझ भी नहीं आएगी, बट वो ऑटोमेटिकली बैकस्टेप होती जाएगी.
2: देख, आई थिंक यू आर अ वेरी स्मार्ट हस्बैंड, क्योंकि जो चीज होने वाली होती है ना, अगर उसे पहले प्रिवेंट कर लो, अ लॉट गेट सेव्ड इन द प्रोसेस. मैंने आपसे इसलिए पूछा था अबाउट योर सेक्सुअल इंटिमेसी की एक रिलेशनशिप में वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, यू नो. सो अगर आप इमोशनली अटैच्ड हैं या नहीं, दैट कैन ऑल्सो स्टेम आउट ऑफ द फैक्ट कि आप कंफर्टेबल कितने हैं एक दूसरे के साथ इन अ सेक्सुअल स्पेस. तो वो तो आई वुड सजेस्ट कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है और आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भी उसे डोंट लेट इट डाई, क्योंकि दैट इज अ टेरिबल साइन. दूसरी चीज, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना दोनों के पास, आई वुड रियली

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

भाइयों और बहनों, प्यार में एक ऐसी घोर बीमारी होती है जो आपको कभी भी कहीं भी ग्रिप कर सकती है, स्पेशली अगर आपका प्यार सच्चा टाइप ऑफ हो। आई एम टॉकिंग अबाउट प्यार का अंधापन। आज मैंने डिसाइड किया है कि आपने जो भी प्यार में अंधे होके काम करे, इंक्लूडिंग जो मैंने करे, वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक्स बॉयफ्रेंड के लिए मैंने इतने पैसे खर्चे कि ऑलमोस्ट कड़की.com मुझे हो गई थी। फिर एक और अंधापन में प्यार में मैंने काम ये किया कि जनाब इज चीटिंग ऑन मी एंड ही जस्ट फॉरगॉट टू टेल मी। ये तो अलग बात है कि हमारे कॉमन

फ्रेंड्स थे, तो ही केम टू मी एंड सेड कि यार सॉरी मुझसे गलती हो गई, यू नो व्हाट, मैं ऐसे नशे में बहक गया था. अब मुझे पता है कि नशे में बहकना एक जगह होता है. आप इस बंदी के पीछे पिछले 2 महीने से पड़े हुए थे और ये मुझे पता चल रहा था. बट यू नो दी अंधापन वाला काम दैट आई डिड, आई नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट आई न्यू ही वाज गोना चीट ऑन मी अगेन. जो उसने किया और मैंने उसे फिर माफ कर दिया. और फिर मुझे लगा कि यार रोसी एक बार तुमने गलती कर दी, दैट्स ओके. एक ही इंसान के साथ सेम टाइप ऑफ गलती 2 बार करना, दैट्स काइंड ऑफ स्टूपिड. फिर मैंने उस द मेंटल द बॉयज को अपनी जिंदगी से निकाल दिया. लेकिन मेरा सवाल आपसे रिमेन्स द सेम टुडे, क्या आपने भी प्यार में कभी ऐसे अमेजिंग अंधेपन वाले काम किए हैं? अगर हाँ तो टेल मी अबाउट इट इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. लेट्स वॉश आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक. हाय, एंड व्हाइल यू हिट मी अप, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: लुक ऑनेस्टली मैं एक तौलिया गिफ्ट करना नहीं चाहती थी अपने देन बॉयफ्रेंड को, पर मुझे करना पड़ा. वो बंदा गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो तप तपाती हुई मॉइस्चर से भरी हुई आफ्टरनून हो, वो बंदा नहीं नहाता था जब तक 3 प्रॉपर सॉलिड दिन नहीं निकल जाते थे. दैट गाय हैड रिफ्यूज्ड टू टेक अ शावर एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि शायद इसके पास एक तौलिया ना हो. तो मैंने जाकर उसके लिए एक तौलिया खरीदा, उसे दिया एंड आई वॉज लाइक ये कैसा लगा तुझे प्रेजेंट. एंड ही वाज लाइक इससे क्या करना है, ये एक नॉटी प्रॉप है लेकिन इसे यूज कैसे करते हैं. आई वाज लाइक ये एक बहुत ही नॉटी प्रॉप है, तू अंदर जाएगा शावर में खड़ा होगा. ही वाज लाइक और फिर. आई वाज लाइक और फिर तू शावर लेगा. एंड ही वाज लाइक और फिर. आई वाज लाइक और फिर तू ये तौलिया अपने ऊपर लेगा और इससे अपनी बॉडी को सुखाएगा. एंड ही वाज लाइक और फिर. आई वाज लाइक और फिर तू एक ब्रांड न्यू इंसान जैसे फील करेगा, ट्राई करके देख, सारी दुनिया करती है डेली बेसिस पर, तुम इकलौते ऐसे इंसान हो बेटा, ये लो तौलिया और दे दो मुझे बदले में एक ब्रेकअप. तो अगर आपके साथ भी जिंदगी में ऐसा ही हुआ है, यू लव द गाय, ही वॉज अ ग्रेट गाय एक्सेप्ट ही रिफ्यूज टू बेथ.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये जो आपने झूठ बोला है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए दैट आपका बाप सबसे अमीर इंसान है इन लाइक द एंटायर कॉलोनी, ये जब आपकी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा, हाउ आर यू गोना डील विद दैट? सोचा है कभी आपने इसके बारे में?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: बट इफ यू हैव अ कन्फेशन लाइक दिस और एनीथिंग एल्स, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू. और मेरे साथ अभी लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ.
2: यू नो इट्स लाइक व्हेन पीपल से थिंग्स लाइक दीज दैट मुझे लगता है कि यार मैं सही जगह पर हूँ. आई चोज द परफेक्ट करियर फॉर माई सेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट.
4: मुझे आप बहुत पसंद हो रोशी, पहले तो मैं ये बोलूंगी.
2: मुझे आप बहुत पसंद हो, सीरियसली. आप हर बार मेरे इंस्टा लाइव पे होते हो, मैं आपका नाम नहीं बता रही हूँ, बट हर बार मेरे इंस्टा लाइव पे होते हो. आई एक्चुअली लुक एट योर पेज अ लॉट एंड आई थिंक यू आर क्वाइट अ डीवा योरसेल्फ. Seriously, no kidding.
4: Thank you
2: for existing. But uske aage there is this one story jo aapne mujhe insta pe batayi thi. I thought that was hilarious. Ha, to kya hua tha?
4: So Roshi, I went on a blind date aur bahut hi bekaar scene ho gaya tha. So main actually main na bahut blind dates pe jaati hu. तो मैं गई और मैं मुझे जाते वक्त उसका नाम याद था, लेकिन जैसे मैं पहुंची ना मैं उसका नाम भूल गई थी. तो हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो मेरा नाम ले रहा है प्रॉपरली और मैं उसको तू करके, तुम करके, आप करके, सब करके बुला

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: रिलेशनशिप्स में ना मैंने एक चीज सीखी है बहुत ही गौर से कि एक रिलेशनशिप में यू शुड लेट पीपल डू व्हाट दे वांट टू डू. जो भी वो करना चाहते हैं जैसा भी वो बिहेव करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए. डोंट स्केयर देम विद कॉन्सिक्वेंसेस. ये मत बताइए कि तुम ये करोगे तो मुझे बुरा लगेगा. देखो कि जब आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हो तब भी क्या वो आपका दिल पढ़ सकते हैं. जब वो जानते हैं कि आप उन्हें कोई टिप्पणी नहीं दे रहे हो तब भी क्या वो आपके दिल को अपने दिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाते हैं जिससे शायद आपको तकलीफ हो. सो लेट पीपल डू व्हाट दे वांट टू डू. क्योंकि तभी आप एक इंसान की असलियत समझ पाओगे व्हेन यू डोंट हैव अ रोल टू प्ले इन हाउ दे बिहेव अराउंड यू. नाउ टेल मी कि आप एक रिलेशनशिप में क्या करते हो. डू यू अलाउ पीपल टू बी हु दे आर और डू यू ट्राई एंड कंट्रोल द रिलेशनशिप. जो भी आपका जवाब है मैं उसे जानना चाहती हूँ. सो हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक विद योर आंसर. एंड व्हाइल यू डू दैट जिसके पास लव है ना उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफ कोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की, एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था, ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है, तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी एंड दैट वॉज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया, कम बैक राइट हियर।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Union, Radio Mercy, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए। जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए, लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको, ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वांटेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस सब।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आपको वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4

इस फिल्म से एज म्यूजिक कंपोजर अपनी शुरुआत की थी इलैयाराजा जी ने, और इसी फिल्म से अपना डेब्यू इलैयाराजा के असिस्टेंट बन करके पता है किसने किया था? दी ए आर रहमान। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, यानी श्रीदेवी जी और कमल हासन की फिल्म। इसी फिल्म से ये दोनों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स म्यूजिक कंपोजर्स हमें मिले थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने बहुत सारे आज लेकर के आई हूँ, तो बस कहीं भी मत जाना।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग अवर राइट नेक्स्ट सुरमई अखियो, ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पर इतना इनोसेंस, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से इन्जॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

only on Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हासन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना, जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स ना मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा, एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हासन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हासन हु सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज अ टाइम व्हेन कमल हासन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हासन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हासन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।
1: ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान।

फिर से वो टाइम आ गया जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगला गाना इज़ अ कल्ट सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या ज़िंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये। यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी ओरिजिनली, तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था। यही गाना था पुंगात्रु पुथी नाथू, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले। कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನೈತಿ.

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं रोल पहले करने वाली थी डिम्पल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोप इन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा देके जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई, और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी, उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें, इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इनकेस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं, आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो, सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया, एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: लाल छड़ी मैदान खड़ी

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी गड्डी में बैठो और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज हाईवे पे जाने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे। Alright, आज का मेरा हाईवे हेट मैं उन दीवानों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना मानते हैं अपने प्यार के लिए और कहते हैं
1: मुझसा नहीं
0: इस अंबर के नीचे। अगर आप ऐसे दीवाने हैं तो ये गाना आज आपको सेलिब्रेट करते हुए। रफी साहब की आवाज, मैं हूँ श्रेया, जाने का टाइम हो गया। विल सी यू टुमारो। इन केस मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे RJ श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। गुड नाइट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ga ma ga ma ga ni sa ga ma ga sa ga ma ba da ba da ni sa ga ma ba.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

la, mucho de ropa ega. Con mola, con mola.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सब की करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: दान मान और नाम के लिए नहीं, मन की शांति के लिए होता है। क्यों? जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूँ, जैसे अभी हाल फिलहाल मैं पढ़ रहा था कि बिल गेट्स ने कहा कि 2030 तक वो अपनी सारी संपत्ति डोनेट कर चुके होंगे, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, इस लेवल का निस्वार्थ होना बहुत बड़ी बात है कि इंसान कह रहा है कि मेरी पूरी संपत्ति मैं डोनेट कर रहा हूँ। 10-15-20% करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और रेफरेंस जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है हैरी पॉटर, जो पहली किताब जो जेके राउलिंग ने लिखी थी वो थी सॉसरर्स स्टोन, और उसमें किताब में जो फिल्म शायद बाद में बन के फिलोसोफर स्टोन हो गई थी, उसमें हैरी पॉटर जो सॉसरर स्टोन या फिलोसोफर स्टोन वो खोज लेता है, और उसमें जो उनके जो कोच मेंटोर प्रोफेसर जो भी कहें डंबलडोर होते हैं, वो उन्हें लास्ट में आके कहते हैं कि ये फिलोसोफर स्टोन को मैंने इस तरह से छुपाया था कि ये सिर्फ उसी को मिलता जिसको उसकी जरूरत नहीं थी। तो वोल्डेमॉर्ट को अगर ये मिल जाता तो शायद इसका वो कुछ कर नहीं पाता, बहुत बुरा होता इंसानियत के लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि ये उसी को मिले जो इसका गलत इस्तेमाल ना करे। तो बहुत खूबसूरत आपने ये जो बात की उससे ये कनेक्टेड था कि कहीं ना कहीं हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से दान करो, कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि वापस घूम के आएगा, लेकिन ये पता होना क्या ईगो की निशानी नहीं है?
4: पता होना नहीं ईगो की निशानी नहीं है, पता होना एक नॉलेज है, लेकिन उसकी आश होना,
3: आश नहीं होनी चाहिए,
4: इच्छा होना,
3: हाँ, वो नहीं होनी चाहिए,
4: डिजायर होना। कभी कभी दान भी हम इसी इच्छा से करते हैं कि हमारा नाम मान शान हो,
3: हाँ, वो नहीं होना चाहिए।
4: चैरिटी हम करते हैं,
3: हाँ।
4: कहीं चैरिटी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं, कहीं चैरिटी कर रहे होते हैं उनको पता है कि इस हॉस्पिटल की दीवार पर उनका नाम
3: आएगा,
4: कुर्सी पर उनका नाम आएगा, तो वो नाम के लिए कर रहे होते हैं, वो मान के लिए कर रहे होते हैं,
3: उस भाव से
4: सफल ही नहीं होता है एक्चुअली में। तो थोड़ा तो होगा, लेकिन जो उसकी 100% सफलता है वो निस्वार्थ। हम एक्चुअली देखो, अभी ये शब्द आने लगा सेल्फलेस सर्विस, सर्विस सेल्फलेस ही होती है।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: अभी हमें किसी को कहना पड़ता है कि आप निस्वार्थ सेवा करो, सेवा निस्वार्थ ही होती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: सेवा माना है कि आपने वहाँ पर उस चीज को एनर्जी को दिया। इफ यू आर हेल्पिंग समबडी, आप किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप किसी को कोच कर रहे हैं, आप जितनी निस्वार्थ भावना से करेंगे उसमें आपका आगे बढ़ना समय है। वो आपको क्रेडिट नहीं देते, वो उनका कर्म है, लेकिन हमें क्रेडिट क्यों चाहिए?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक सवाल आया सिस्टर श्रेया। नमस्ते, मेरा प्रॉब्लम है अपने मन को शांत कैसे रखूं, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं। मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया है। मैंने बार बार उनको मौका दिया बट सब ठीक होके भी नहीं है। मन हमेशा बेचैन रहता है। अब मैंने उन्हें बोलना ही छोड़ दिया है पर कभी कभी बर्दाश्त नहीं हो पाता। प्लीज हेल्प मी।
2: अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है तो चीटिंग राइट नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: अब जब किसी ने पहली बार चीट किया तो हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम उनको सेकेंड चांस देते हैं कि नहीं देते हैं।
1: जी,
2: कई लोग कहते हैं जो एक बार चीट करता है वो हमेशा चीट करता है। आई डोंट बिलीव दैट। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो एक भूल अभी किया मैं हर बार करूंगी।
1: सही बात है।
2: हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर कोई बदलना चाहता है सो अगर किसी ने पहले चीट किया है, चीट वो करते हैं, हर्ट हम होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: दोनों में देखो फर्क है। ट्रिगर वो बने हैं, डेफिनेटली वो ट्रिगर है, लेकिन उसके बाद उसके बारे में सोच कर उसको पकड़ कर उसको रिपीट करके हमने वो हर्ट क्रिएट किया है। हमें फियर इस चीज का नहीं होता कि वो वापस चीट करेंगे। हमें फियर इस चीज का होता है जो वो कह रहे हैं वो बेचैन है।
1: वो बेचैन, हाँ।
2: अगर वो फिर से करेंगे सो आई विल हैव टू गो थ्रू दैट इमोशनल सफरिंग ना
1: अगेन।
2: सो मुझे वो सफरिंग, किसी को भी सफरिंग नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: सो आई हैव टू एम्पावर माई सेल्फ कि वो कुछ भी करे लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है वो मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। लाना पड़ेगा अपने को उस लेवल तक, हमें लाना पड़ेगा। इट मे साउंड डिफिकल्ट बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास मेरी इमोशंस और थॉट्स और पार्ट के ऊपर कंट्रोल है।
1: लेकिन सिस्टर, आई एम अज्यूमिंग ये पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऐसे केस में तो फिर डिटैचमेंट इज द ओनली वे।
2: डिटैचमेंट किस से? डिटैचमेंट पार्टनर से नहीं, लेकिन डिटैचमेंट उनके कर्म से। कर्म तो गलत ही है ना। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। उनका कर्म गलत है,
1: ठीक है,
2: लेकिन इस गलत कर्म के बाद मुझे कितना समय हर्ट रहना है और कितना समय दुखी रहना है, वो चॉइस तो मेरे पास
1: है।
2: इफ आई बिकम ओके दैट डजंट मीन देयर कर्मा इज राइट।
1: तो वो गलत किया उन्होंने,
2: तो वो तो बिहेवियर रॉन्ग ही है। जैसे हम कहते हैं अगर हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि उनका एक्शन राइट था।
1: सही बात है।
2: एक्शन तो उनका गलत ही है बट नाउ आई एम चूजिंग कि भाई और नहीं, आई वांट टू रिलीव माइसेल्फ फ्रॉम दैट पेन।
1: सही बात।
2: क्योंकि मैं कर्म आपका और दर्द में मैं रहूं,
1: ये तो सही नहीं है।
2: तो उनके गलत कर्म के बाद भी मैं डिसाइड करती हूँ कि आई हैव टू हील माइसेल्फ।
1: सही बात है।
2: नाउ सेकंड थिंग, मुझे चांस देना है कि नहीं,
1: वो भी
2: दैट शी विल हैव टू डिसाइड कि अगर उनका पार्टनर सच में उस चीज को लेकर के यू नो ही इज फीलिंग सॉरी अबाउट इट, उनको सच में लगता है उनको भूल है, वो चाहते हैं बदलना। सो आई फील हर एक को एक चांस देना चाहिए। आपने चांस दिया, उन्होंने फिर वो चीज रिपीट करी, वो बार बार कर रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है दैट वेदर यू वॉन्ट टू लिव इन दिस मैरिज, यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यू वॉन्ट टू सेपरेट, वो सब ओके है, लेकिन आप हर्ट क्यों हो रहे हैं, आप दर्द में क्यों जा रहे हैं, आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। सो टेक केयर, पहले तो बाहर कुछ भी डिसाइड करने से पहले अपने को ठीक करें, नहीं तो डिसीजन गलत हो जाएगा। उस डिसीजन का इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। दर्द में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी हीलिंग करें। उनका संस्कार है, आप जितनी बार उनको चांस दे सकते हैं दे, नहीं दे सकते डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट एंड देन टेक दैट डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड।
1: शी आल्सो सेड कि मैं सुसाइड करने का सोच रहा हूं।
2: हाँ, मतलब हम क्यों एक्सट्रीम तक जा रहे हैं? किसी की गलती के लिए हम पहले हर्ट हो रहे हैं, फिर डिप्रेस्ड हो रहे हैं, फिर सुसाइड कमिट करने का सोच रहे हैं, तो इससे क्या, मतलब उसमें क्या फायदा है? सो व्हाट वी आर सेइंग इज आई एम टोटली इन कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन ना। कर्म उसका, संस्कार उसका, गलती उसकी, वीकनेस उसकी, बट बिकॉज आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई माइंड एंड इमोशंस, तो हम इतने ज्यादा लो हो जाते हैं कि हम एक्सट्रीम स्टेप तक लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहले अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, रिमाइंड योर सेल्फ, इसमें आपकी कोई भूल नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: वो उनका कर्म है, वो उनकी वीकनेस है, एंड देन सी हाउ यू कैन इम्प्रूव द रिलेशनशिप।
0: Mission मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: संतुष्ट व्यक्ति ही सच्ची निस्वार्थ सेवा कर सकता है, कैसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अब बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां बहुत रेगुलरली जाते हैं हेल्प करने के लिए, तो उनके एक डोनेशन ड्राइव हो रही थी, तो हम कुछ लोग इधर उधर जा रहे थे डोनेशन लेने के लिए। तो एक अंकल से हम मिले, तो अंकल को हमने कहा कि भाई जो लोग फना अमाउंट के ऊपर दे रहे हैं तो उनका नाम हम वहां छापना चाहते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन दिया, उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं चाहिए। तो हम छोटे बच्चे, हमने कहा अरे नाम नहीं चाहिए, अंकल सब बोल रहे हैं हमारा नाम लिखो, आप बोल रहे नाम मत लिखो, ये और सबसे बड़ा डोनेशन शायद आप ही ने दिया है। वो कहते उस नाम का क्या करूंगा, बेंच पे ही तो लिखोगे, बेंच पे सब बैठे ही मेरा नाम मिट जाएगा, मेरा नाम तुम्हारे मन में रहे काफी है मेरे लिए। मैंने उस दिन इतनी बड़ी सीख सीखी कि ये आदमी ऐसा कैसे सोच सकता है, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने समझाया कि उस नाम का मैं क्या करूं जिस पे बैठ के ही मेरा नाम मिट जाएगा, अपने दिल में रखो अपना नाम याद रहेगा मुझे।
4: चलिए आप देखिए संतुष्टता के निशाने, When you're very content, आप अंदर से भरे हुए हैं तो ही आप दे सकते हैं, नहीं तो आप देने में भी लेने का सोच रहे हैं।
3: हाँ, कि वहाँ से क्या आएगा मेरे पास।
4: जैसे हमारे भी सेंटर्स होते हैं, कहीं पर कई लोग कई चीजें दान करते हैं, पर कभी भी कहीं पर किसी का नाम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बेंच ही है, आज अगर कोई सेंटर पर आता है और बेंच पे उसका नाम है, तो बेंच पर बैठते ही आपको कौन याद आएगा, भगवान याद नहीं आएगा।
3: मैं
4: उसने दी, पर सडनली आप वहाँ पर उस स्थान पर आए थे किसको याद करने के लिए। आप आए थे परमात्मा को याद करने के लिए, मेरा घर है, मेरा सेंटर है, मेरा आश्रम। लेकिन तुरंत आपको क्या आएगा, अच्छा ये इसने दिया, तो फिर आप उसी बॉडी कॉन्शियसनेस में, उसी ईगो कॉन्शियसनेस में फंस जाएंगे। सो एक्चुअली दान जब भी होता है, इट हैज टू बी, वो कहते ना एक हाथ ने दिया
3: दूसरे हाथ को भी पता ना चले,
4: दूसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसे कहते थे कि एक हाथ ने किया, दूसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपकी सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। हाय, आई एम अभिषेक। कभी कभी हम उस इंसान को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं जितना वो हमें नहीं देता, जिसके बाद हमको बहुत अफसोस होता है,
2: क्योंकि हम उससे कुछ ले रहे हैं ना। हम इतना इम्पोर्टेंस आप दें उसमें कोई बुरी बात नहीं। हम ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ से प्यार मिल रहा है, खुशी मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। हम टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट है
1: और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी उतना ही मिलेगा।
2: फियर तो होता ही है, पर कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं पर हम सामने वाले को बहुत सफोकेट भी कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: आप जब किसी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि उसको भी अपना सारा समय आपके लिए देना चाहिए। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, उस समय पर किससे बात कर रहे थे, मैं इतनी देर से वेट कर रहा था, मुझे इतना वेट क्यों कराया। तो जो आपकी इतनी इनसिक्योरिटी है वो सामने वाले को सफोकेट करती है। अगर कोई भी सफोकेट होगा, ग्रेजुअली वो दूरी बनाएगा, फिर वो उस रिश्ते से निकलना चाहेगा, फिर आपको अफसोस होता है कि मैंने उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया था।
1: सही बात।
2: सो सेल्फ रिस्पेक्ट में रह करके रिश्ता इज ऑल अबाउट गिविंग, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग।
1: क्या बात, बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पर चिंतन नहीं, स्वचिंतन ही इनर पीस देता है, क्यों जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक बहुत खूबसूरत किताब है जो रायन हॉलिडे ने लिखी है, उसका नाम है ईगो इज द एनिमी, और वो बहुत खूबसूरत किताब है। कभी मौका पड़े तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, जरूर पढ़ें। और रायन हॉलिडे बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग हेड बन गए थे, और उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है, और वो कहते हैं कि मैंने किताब तब लिखी जब मैंने रियलाइज किया कि मुझमें ईगो भर भर के आ रहा था, और इसलिए मुझे जरूरत पड़ी इस किताब लिखने की। वो किताब लिखते समय उन्होंने बहुत कुछ रियलाइज किया, और वो उस किताब में बहुत खूबसूरत सा एक वाक्या लिखते हैं कि सबसे पहली बीमारी जो हम सबके साथ होती है वो ये है कि हम अपने एक लिए एक इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो उसको इमेजिनरी ऑडियंस कहते हैं। वो कहते हैं कि, और उसमें छोटा सा एक एग्जांपल है कि एक बच्चा जो है वो 7 दिन तक स्कूल नहीं गया, और क्यों नहीं गया, क्योंकि 7 दिन के पहले जब वो स्कूल गया था तो कैंटीन में उसने कोई एक जूस अपने पैंट पे गिरा दिया, कुछ 2-3 बच्चों ने हंस दिया उस पे, और उसे लगा कि सब लोगों को याद रहेगा, मेरी बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई, बड़ी मेरी बेइज्जती हो गई, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सोच सोच के वो स्कूल 7 दिन नहीं जाता, जबकि जब वो 8वें दिन जाता है तो किसी को याद भी नहीं हुआ होता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये जो इमेजिनरी ऑडियंस है जो हम सबके दिमाग में चलता है कि फला क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, इसके चलते हम बहुत सारी चीजें कर नहीं पाते, और हकीकत यह है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा होता। तो ईगो का एक कारण ये भी होता है कि हम बहुत सारी चीजें हम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इससे निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है?
4: आपने कहा कि हो सकता है दूसरे हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे।
3: बिल्कुल,
4: दोनों हो सकता है।
3: हाँ,
4: ये भी हो सकता है कि सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है कि नहीं सोच रहे हैं। डजंट मैटर। ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे, कई बार सच में सोच रहे होते हैं। क्योंकि आजकल जितने हम कमजोर होते हैं ना, हम अपने बारे में कम सोचते हैं,
3: दूसरों के बारे में ज्यादा सोच रहे
4: हैं। हम कहते हैं परचिंतन। परचिंतन क्या हुआ, आप 3-4 मिले हैं तो आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे का ही तो चिंतन कर रहे हैं ना,
3: खुद के बारे में
4: गॉसिप।
3: गॉसिप बिल्कुल।
4: अलग बात यह है कि हम उसको आजकल कह देते हैं हार्मलेस गॉसिप। आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस कि गॉसिप कैसे हार्मलेस हो सकती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डिप्लीटर है। और आप जिस दिन नहीं होंगे उस ग्रुप में, सो बी अश्योर्ड
3: आपके बारे में बात होगी,
4: आपके बारे में ही बात होगी।
3: मैं हमेशा कहता हूँ जिस शब्द के साथ लेस जुड़ा हुआ है ना, वो होता जरूर है, वो थोड़ा लेस होता है, बस यही है। तो मैं कहता हूँ हार्मलेस का मतलब है कि भैया हार्म हो रहा है, लेस हो रहा होगा लेकिन हो जरूर रहा है।
4: फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी चीज है, आज आपने एक शर्ट पहनी है, येलो शर्ट पहनी है। अब आप कह रहे हैं कि किसी को क्या फर्क पड़ता है, कोई सोच ही नहीं रहा। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर 100 लोग काम करते हैं, किसी को क्या मतलब कि आपने क्या पहना है। ये भी हो सकता है कि उसमें से कोई 2-4 आकर के कहे, अरे बहुत अच्छी लग रही है, ये तो बहुत अच्छा कलर है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एनर्जी प्योर आ रही है। उसमें से 2-4 ये भी हो सकते हैं,
3: क्या यार रोज एक ही शर्ट पहन ले तो इतना गंदा कलर,
4: येलो कलर कोई पहनता है, पता नहीं क्या, येलो तो डर्टी फेलो है, या ये तो पहले फीमेल्स पहनती थी, या व्हाटएवर। हो सकता है कि नहीं हो सकता।
3: बिल्कुल।
4: अब डिपेंड करता है कि आपकी जो सेल्फ अंदर की जो कॉन्वर्सेशन है वो किस प्रकार से चलती है। अब वो एक कॉन्वर्सेशन ये हो सकती है कि देखो ना, इन्होंने ऐसे बोला, दिस विल मेक यू फील वेरी लो, क्योंकि आप किससे इफेक्ट हो गए,
3: नेगेटिविटी से।
4: वो इमेजिनरी ऑडियंस नहीं है, वो बहुत रियल ऑडियंस है। ये रियलिटी है कि लोगों का हर चीज के प्रति एक ओपिनियन होना ही है। कभी कभी वो अपने दुनिया में खोए हुए हैं, नहीं था, दे डिड नॉट रियलाइज, पर मेजोरिटी करके हर एक का किसी न किसी चीज के प्रति कुछ ना कुछ ओपिनियन होता है। और दूसरी एक कॉन्वर्सेशन सिंपल सी थी कि आपको कहना था कि मुझे येलो कलर अच्छा लगता है, मैंने येलो कलर पहना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे कंफर्टेबल है, मुझे तो और पहन करके बहुत
3: अच्छा लगता,
4: खुशी हो रही है, जो कभी अटेंशन नहीं मिलता था वो भी आज मिल रहा है, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट मी, दैट्स इट। तो जो आप बात कर रहे हैं उस बच्चे की, सेल्फ वर्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, इवन आफ्टर पीपल हैव एक्स वाई जेड ओपिनियन।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 89.9।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। दिलीप सिंह चौहान है जयपुर से, लिखते हैं कि व्हाट इज द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। सही कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लाएं अपनी जिंदगी में?
2: वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस एक बेसिकली आप एक एलिवेटेड स्टेज में जाकर के सब कर्म कर सकते हैं। आप अगर कहें, फॉर एग्जांपल मैं उनको कह भी दूं कि वर्क लाइफ बैलेंस में आप जितना समय वर्क पर देते हैं उतना समय आप घर पर दें, बट आई डोंट नो व्हाट हिज प्रोफाइल जॉब है।
1: बिल्कुल।
2: आज कोई मिलिट्री में है,
1: वो नहीं पाता।
2: आज कोई सर्जन है, उसको अचानक रात को भी उठ करके जाना पड़ता है। तो आपका अगर वो वर्क है और प्रोफेशन है, वो डिमांड करता है, किसी का 8 घंटे करता है, किसी का 12 घंटे करता है, किसी का 6 घंटे भी करता, 6 महीने भी करता है, दे डोंट मीट देयर फैमिलीज फॉर 6 मंथ्स ऑल्सो, लेकिन जितना समय आप हैं उनके साथ, पहली चीज अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो करें। कहाँ आप कट कर सकते हैं, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? आजकल सोशल मीडिया बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जो आप कट कर सकते हैं, इनकेस इफ यू कैन स्पेंड मोर टाइम, डू इट, दैट इज वन। सेकेंड, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो छोड़ दें, गिल्ट में नहीं जाएं।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
2: नहीं जाएं गिल्ट में। अगर आपका वर्क डिमांडिंग है, वो आपको करना ही है, तो उस ऑप्शन को खत्म कर दें, अपने मन से गिल्ट को निकाल दें। अगर आप अब 2 ही घंटे अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, मेक इट क्वालिटी।
1: मेंटली प्रेजेंट रहिए, सिर्फ फिजिकली नहीं,
2: मेंटली प्रेजेंट रहिए। उस समय पर भी मेल्स चेक कर रहे हैं या वर्क प्लेस पर हैं या आई कॉन्टैक्ट नहीं है, जो छोटी छोटी चीजें हमें पता है, बहुत समय नहीं चाहिए होता, क्वालिटी टाइम चाहिए होता।
1: बिल्कुल, बहुत सही।
2: थर्ड, आप अगर नहीं भी हैं, सो फैमिली के साथ हमारा जो कनेक्शन है ना, इट इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज वाइब्रेशनल ऑल्सो। तो समझो आज बच्चे का एग्जाम है, आप उसके लिए फिजिकली वहां पर नहीं है, लेकिन एट अ वाइब्रेशनल लेवल ऑल्सो आप सोचते हैं कि उसका बहुत अच्छा होगा।
1: बिल्कुल,
2: वो सफल होगा, आई एम देयर फॉर यू। आप 1 मिनट ही बात करते हैं उसके साथ और कहते हैं बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है आपने सफल होना है, दैट विल ऑल्सो एम्पावर योर चाइल्ड। कई बार उनको टाइम नहीं चाहिए होता, पावर चाहिए होती।
1: सही बात।
2: आप कहीं से भी दे सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया।
2: आप मीटिंग में बैठे हैं लेकिन आप सोचे जा रहे हैं, एज अ मदर आप गिल्ट में जा रहे हैं, आई कांट गिव टाइम टू माई चाइल्ड, मैं समय नहीं दे पाती, उसका एग्जाम है। वो जो कहते हैं ना, हर मदर को एक गिल्ट ट्रिप होती है, नहीं करें।

0: या तो छोड़ दें जो आप कर रहे हैं, या आप नहीं छोड़ सकते तो अपनी कॉन्शियसनेस को इतना एलिवेट कर लें कि आपका वाइब्रेशन भी उनको एम्पावर करे,
1: पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: दूसरों का फीडबैक सुनना जरूरी है, पर उससे अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं होने देनी चाहिए। कैसे, समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक बार जावेद अख्तर साहब कहीं कह रहे थे कि जब लगान बन रही थी तो लगान फिल्म के गाने के लिए उन्हें बोला गया था कि आपको ये गाने लिखने हैं, तो वो आमिर खान के पास गए, बोले तुम क्या पागल हो, ये किस तरह की फिल्म बना रहे हो, गांव पे फिल्म चलती नहीं है, तुम गांव के हीरो बनना चाहते हो, जो हीरो धोती पहनता है वो फिल्म कभी नहीं चलती, तुम इसमें धोती भी पहन रहे हो, क्रिकेट बहुत स्लो गेम है, उस पे फिल्म बनानी नहीं चाहिए, तुम क्रिकेट भी डाल रहे हो उसके अंदर, तुम क्या कर रहे हो, और गाने देखो किस तरह के, कि बारिश आने वाली है फिर बारिश नहीं आई, फिर बारिश आ रही थी फिर बारिश रुक गई, तो क्या तुम पागल हो, किस तरह गाने लिखोगे। तो आमिर खान ने उनका, मुझे बहुत कन्विक्शन है इस फिल्म में, मैं ये फिल्म बनाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों ने, जावेद अख्तर इंक्लूडेड, उनको कहा कि मत बनाओ ये फिल्म, लेकिन उनमें कन्विक्शन इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी बात मैंने सुनी, अच्छी लगी बात, आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे बारे में सोच रहे। तो जावेद अख्तर का मेरा काम है गाने लिखना, मैंने लिख दिए। बट आमिर खान में कन्विक्शन थी कि स्टोरी अच्छी है, कहानी अच्छी है, ये बोलनी चाहिए, और पीरियड फिल्म, उन्होंने कहा पीरियड फिल्म नहीं चलती, तुम पीरियड फिल्म बना रहे हो, उन सब ना के बावजूद उन्होंने ये फिल्म कंप्लीट की और कमाल की फिल्म बनाई। तो पर चिंतन जरूरी नहीं है, आप में कन्विक्शन कितना है वो जरूरी है।
4: इसमें ये भी है, देखो इसमें दोनों बातें हैं। अगर आप जावेद साहब की बात करें तो वो भी एक बहुत अनुभवी व्यक्ति है।
3: हाँ, बिल्कुल,
4: वो अपना एक फीडबैक दे रहे हैं।
3: हाँ।
4: वो क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक फीडबैक दे रहे हैं एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर भी दे रहे हैं। मना जरूरी नहीं है कि ये फिल्म हिट ही हो गई, बहुत अच्छा है। हाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है,
3: भी हो
4: जाती है, बट एट द सेम टाइम किसी ने कुछ कहा, हम उनकी बात सुने जरूर, इफेक्ट नहीं हो, दोनों में बहुत फर्क है। इतनी भी मेरे अंदर ईगो नहीं है कि मुझे आपकी राय और उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी तो एक ईगो है ना। आई थिंक मैं ही राइट हूँ, बस मैं ही, ऐसा नहीं। अगर मुझे लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, मैं सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं ये करना चाहिए,
3: तो मैं करता हूँ,
4: तो मैं करता हूँ।
3: तो एनालाइज करना जरूरी है,
4: एनालाइज करना जरूरी है, और उसके बाद उस फेलियर और सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी जरूरी
3: है। ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल, बहुत।
4: अगर वो फेलियर भी हो जाता तो कोई बात नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं है, मुझे उस समय लग रहा था कि ये करना चाहिए, ये सफल हो सकता है, कई लोगों ने राय भी दी, तो भी मुझे लग रहा था ना कि ये करना चाहिए, मैं नहीं करता तो भी तो एक रिग्रेट रह जाता,
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि मुझे उसके ऊपर कन्विक्शन था। सो सी, देयर इज दैट लाइन वेयर आप सुनते भी हैं लोगों के ओपिनियन, आप उनका फीडबैक लेते भी हैं, पर आप टोटली अफेक्टेड नहीं होते, इतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते, आप ले करके फिर उसको एनालाइज करके, रिफ्लेक्ट करके, जो आपको ठीक लगता है आप करते हैं, एंड देन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फेलियर और सक्सेस।
3: ये बहुत अच्छी बात बताई कि अफेक्ट होना जरूरी नहीं है, उस सिचुएशन को सही मायने में देखो और फिर अपना दिमाग लगा के आगे बढ़ो।
4: अफेक्ट होने में देखो क्या होगा, अब हम सबको तो कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे येलो शर्ट नहीं पसंद, मुझे पिंक पसंद है, तो आप पिंक पहनेंगे, फिर कोई दूसरा कहेगा उसको पिंक नहीं ग्रीन पसंद है, तो आप ग्रीन पहनेंगे, फिर वो कोई कहेगा रेड, आप क्या करेंगे।
3: सही बात है,
4: यू विल लूज योर सेल्फ, आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या अच्छा लगता है। आजकल दुनिया में आइडेंटिटी क्राइसिस है,
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
4: क्योंकि मुझे यही नहीं पता मुझे क्या अच्छा लगता है,
3: बिल्कुल,
4: मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है, सफलता तो बहुत दूर की बात है, मेरे को यही नहीं पता कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इंसान आपको अलग अलग रास्तों पर ही लेके जाएगा। मुझे याद है जब मैं पहली बार बाल शेव करने लगा था, तो मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरे वाइफ को बहुत पसंद था। अब मम्मी कहती मत शेव करो, वाइफ कहती शेव करो, तो मैंने कहा यार ये मतलब Let me do what I like to do.
4: Absolutely. So you take their feedback. ऐसा नहीं है, कभी कभी उनके एक्सपीरियंस जो भी है वो क्यों ऐसा कह रहे हैं और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें, बट फाइनली आपको अपने साथ बैठ करके मुझे, मेरे लिए क्या कम्फर्टेबल है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: HG Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। अभिषेक सेठिया पूछते हैं कि भाई मैं रेगुलरली कैसे पढ़ाई करूं, शायद मेरा मन भटकता, ध्यान नहीं लगा पाते वो।
2: शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, अपनी कैपेसिटी को देख करके गोल्स बनाए और डिटर्मिंड रहे। हमारा मन थोड़ा सा क्या करता है, अपने से प्रॉमिस करता है, बहुत अच्छा प्रॉमिस करता है, ऑनेस्टली प्रॉमिस करता है कि मैं रोज पढ़ूंगा, लेकिन जिस चीज की कमी होती है वो है डिटर्मिनेशन।
1: बिल्कुल,
2: मैं कई बार कहती हूँ डिटर्मिनेशन इज लाइक, आपने प्रॉमिस किया, इट्स लाइक सोइंग अ सीड, फिर उसको रोज पानी देना पड़ता है।
1: बहुत जरूरी।
2: तो डिटर्मिनेशन क्या है, अपने को याद दिलाना कि रोज पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि दिस विल ब्रिंग गुड मार्क्स, विल लीड टू गुड कॉलेज, विल लीड टू माय ड्रीम जॉब। तो अपने को आप मोटिवेट करें और ऐसा गोल बनाएं जो अचीवेबल हो। ऐसा गोल कई बार हम बना लेते हैं जो
1: 6 घंटे पढ़ूंगा, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, कभी कभी नहीं होता है। अपने आपको बोलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा
2: कैपेसिटी से बनाए, चाहे कोई 18 घंटे भी पढ़ा है, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी को देखें, 2 घंटे से शुरू करें, 1 घंटे से शुरू करें। आप जब उसको अचीव करेंगे, जब हम छोटा गोल बनाते हैं और हम उसको अचीव करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है।
1: तो फिर अपने आप,
2: फिर वो खुशी हमें अपने आप मोटिवेट करती है और हम अपने छोटे गोल से लार्जर गोल्स को अचीव कर पाते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: été.
1: कैसे हो के जवाब में ठीक हूं कह देने से

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my desi people. This is Priscilla with you and you're officially tuned in to Mirchi Mornings. जहाँ पर सुबह की चाय जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होती है, conversation ज्यादा गर्म होती है. So whether you're driving to work, stuck in the legendary traffic, packing lunch, या फिर pretend कर रहे हो work करने का while you're actually deciding what to have for dinner tonight, I see you. And I'm going to be with you for next few hours. And listen, थोड़ा सा drama, थोड़ा सा romance, थोड़ा सा confusion, थोड़ा सा dance. सब कुछ ऐड करेंगे तुम्हारे मिर्चीदार मॉर्निंग्स में. सो लेट्स स्टार्ट योर मॉर्निंग्स विद गुड म्यूजिक, देसी वाइब्स एंड काफी सारी बातें. मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में. यू आर हैंगिंग आउट विद मी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. वॉल्यूम बढ़ा लो एंड कॉफी चढ़ा लो एंड हे स्टे कनेक्टेड विद मी. इंस्टाग्राम और एक्स पर भी दोस्ती पक्की करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

0: मिर्ची फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there. Good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब दिस डे दैट ईयर का टाइम आ चुका है। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैलकटा में अपना पहला रूपी कॉइन मिंट किया था। देन 1919 में अफगानिस्तान साइंड द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, मेकिंग इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। फास्ट फॉरवर्ड टू 1934, जर्मन वोटर्स अप्रूव्ड अ रेफरेंडम गिविंग एडोल्फ हिटलर एब्सोल्यूट पावर एज फ्यूरर। डेफिनेटली वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स in history. Now a lighter one. 1960 mein Soviet Union launched Sputnik 5 carrying Belka and Strelka, two dogs who became the first animals to orbit space and come back alive. And then 1991 mein Soviet hardliners launched a coup against Mikhail Gorbachev. Aur aaj hai World Humanitarian Day, reminding us ki kindness is always in style. Plus today is World Photography Day. So take a picture, take that picture. Mirchi Karega Bandhan Pura contest chal raha hai for Rakhi. Send us your cutest and bestest sibling moments ke pictures. WhatsApp karne ke liye likhna hai बंधन, उसके साथ अपना पिक्चर भेजना है अपने पूरे नाम के साथ 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। या फिर डीएम करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। फिर फोन के पास रहना, मैं कॉल कर सकती हूँ। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर राइट नाउ। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
2: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड आप मौसम का हाल चाल पता करते हैं। राइट नाउ इट्स अराउंड 68 डिग्रीज फारेनहाइट, मोस्टली क्लाउडी है, लेकिन फील हो रहा है अ लिटिल बिट वार्मर एट 70 डिग्रीज फारेनहाइट। सो हाँ, स्वेटर निकालने की जरूरत नहीं है, बट डोंट ब्लेम मी अगर एसी में बैठकर थोड़ी सी ठंड लग जाएगी। गुड न्यूज ये है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मोस्टली सनी कंडीशंस एक्सपेक्टेड है। सो अगर तुम कम्यूट कर रहे हो, बाहर एरेंड्स रन कर रहे हो, या फिर लंच ब्रेक में अपने दोस्तों से मिल रहे हो, फैमिली मेंबर्स से मिल रहे हो, सनशाइन इज ऑन योर साइड। एंड बाय इवनिंग 6 बजे के आसपास स्काइज जो है वो पार्टली क्लाउडी होने वाले हैं। एंड आज का टेम्परेचर भी देख लेते हैं, इट्स अ कंफर्टेबल टू वार्म 68 डिग्रीज फारेनहाइट से 86 डिग्रीज फारेनहाइट तक, एंड फील्स लाइक टेम्परेचर होने वाला है 88 डिग्रीज फारेनहाइट तक। कल का टेम्परेचर था 71 से लेकर 85 डिग्रीज फारेनहाइट तक, सो आज थोड़ा सा हाई है बट मोर लेस सिमिलर है। एंड रेन लास्ट 24 आवर्स में इट वॉज जस्ट 1 मिलीमीटर की बरसात, एंड नेक्स्ट 24 आवर्स में देर इज जीरो जिल्ज नाडा प्रेसिपिटेशन। बेसिकली आज अम्ब्रेला को घर पर रहने दो, तुम फ्रीली बाहर जाओ। एंड स्पीकिंग ऑफ थिंग्स वर्थ सेलिब्रेटिंग, मिर्ची करेगा बंधन पूरा, राखी के लिए हमारा क्यूटेस्ट फनीएस्ट कॉन्टेस्ट चल रहा है, सबसे प्यारा सिबलिंग मोमेंट अपने पिक्चर्स वाला भेजो हमें, व्हाट्सएप करो बंधन, उसके बाद लिखो अपना नाम एंड सेंड अस दैट पिक्चर 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर। और अगर तुम इंस्टा पर हो और अभी के अभी डीएम कर सकते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज MIRCHIPRIS, और उसके बाद फोन के पास रहना बिकॉज कॉल आ सकता है तुम्हें मिर्ची से कभी भी। राइट नाउ दिस इज प्रिसिला विद यू वाइबिंग ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अब सुनते हैं कुछ मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची आवर कैट थ्री, जहां पर तुम्हें मिलती है तीन तड़कती भड़कती हुई हेडलाइंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले एन इंडियन ओरिजिन वुमन वेंकटा नरसमंबा वसम सेट्टी, हु हैज लिव्ड इन द यूएस फॉर 27 इयर्स एंड होल्ड्स अ ग्रीन कार्ड, हैज रिपोर्टेडली बीन डिटेन्ड बाय आईएस। हर डेपोटेशन केस हैज बीन डिसमिस्ड बाय एन इमिग्रेशन जज इन मे। द गवर्नमेंट हैज अलेज्ड दैट शी अबैंडन्ड हर परमानेंट रेजिडेंसी आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 7 मंथ्स इन इंडिया इन 2022 व्हाइल केयरिंग फॉर हर एलिंग पेरेंट्स। नंबर टू पर स्वीडन फाउंडेड यूएस बेस्ड हार्ट एरोस्पेस हैज completed the first test flight of its X-1 demonstrator in New York. The company says it's the world's largest electric aircraft. It flew for 27 minutes, reached 1,100 feet and used about $7,500 worth of electricity. And lastly, Rishabh Pant has entered the Sixers Club. During the first test against Sri Lanka in Gale, Pant became the first Indian batter to smash 100 sixes in test cricket, doing it in his 51st test. He is only the fourth batter ever to reach the landmark, joining Ben Stokes, Brendan McCullum and Adam Gilchrist. And that's your Mirchi Abaka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Follow me, Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS on Instagram and X, and WhatsApp ka number hai 90336472444. Stay tuned and stay hot.

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान.
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
1: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ.
2: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
1: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम.
2: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान सवाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
1: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
2: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
1: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई. मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार? कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
1: डॉक्टर बोल रहा
2: हूँ. मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
1: ऐसा केस
2: आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले
1: परिवार वाले आदमी से बात करता है? कौन है?
2: खुशी की बात मत करिए आप. आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
1: जी,
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
1: मेरी बात सुनिए सर,
3: आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं. क्या
3: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. मिर्ची फ्रेश माल.
5: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तबाही.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। इंडियन क्रिकेट फैंस, आज कॉफी की जरूरत नहीं पड़ने वाली, स्कोर कार्ड ही इनफ है। टीम इंडिया हैज डन इट अगेन। इंडिया डिफीटेड श्रीलंका बाय 165 रन इन गेल, टेकिंग अ लीड बाय 1-0 इन द 2 टेस्ट सीरीज। एंड दिस विन केम इन इंडियाज लैंडमार्क 600th टेस्ट मैच। और ये भी सुन लो कि श्रीलंका में इंडिया की ये 6th कंसेक्यूटिव टेस्ट विक्ट्री है। प्लस इंडिया का अनबीटन रन अगेंस्ट श्रीलंका नाउ स्ट्रेचेस टू 11 टेस्ट। लास्ट टाइम श्रीलंका बीट इंडिया इन अ टेस्ट, इट वाज 2015। मतलब कि श्रीलंका में इंडिया टेस्ट क्रिकेट का रिलेशनशिप स्टेटस है इट्स सुपर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मोस्टली फॉर श्रीलंका। एंड इफ क्रिकेट गॉट यू फीलिंग लाइक सेलिब्रेटिंग, देन आई विल टेल यू तनिष्क पर चल रहा है फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहां पर तुम्हें 25% ऑफ मिल रहा है डायमंड की वैल्यू पर और साथ साथ में मेकिंग चार्जेस पर भी। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास पुराना गोल्ड है विच इज 18 कैरेट से अबव, लेकर जाओ वहां पर एक्सचेंज कराओ और 0% डिडक्शन पाओ। सो अगर तुम्हारा पुराना गोल्ड लॉकर में रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा है, उसको काम करवाने का टाइम आ चुका है फॉर योर ग्लो अप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6 4 7 2 4 4। Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब बर्थडे रोल कॉल का टाइम है। सबसे पहले, अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑफ कोर्स आज तुम्हारा वाईफाई स्ट्रांग रहे, तुम्हारी कॉफी सुपर स्ट्रांग रहे और तुम्हारे रिलेटिव्स जो है वो तुमसे बेखुदा सवाल ना पूछे। नाउ लेट्स फाइंड आउट हु यू आर शेयरिंग अ स्पेशल डे विद। सबसे पहले, तुम्हारे बर्थडे बडीज में इंक्लूड होते हैं फॉर्मर US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, हु वाज बोर्न इन 1946। देन वी गॉट माइक्रोसॉफ्ट के CEO Satya Nadella, who was born in 1967, and Hollywood star John Stamos, जिनको तुमने Houseful में अंकल जेसी के रोल में देखा होगा, he was born in 1963. And then we've got some legends जिनकी birth anniversaries है आज। We remember fashion icon Coco Chanel, aviation pioneer Orville Wright, and former president of India Shankar Dayal Sharma, and friends के fan, this one's for you, and of course for me, Matthew Perry, our beloved Chandler Bing, who was also born today. Could this day be any more exciting? Plus, actress Kira Sedgwick and rapper Fat Joe are also celebrating their birthdays today. And speaking of celebration, Mirchi par Rakhi ke upalaksh mein chal raha hai Mirchi Karega Bandhan Pura contest. Isme tumhe participate karna apne sibling ke saath, bhejna hai mujhe cutest, craziest, funniest, bestest sibling moments picture ke form mein. WhatsApp karo abhi ke abhi, type karo Bandhan sabse pehle aur uske baad likho apna naam aur apna picture bhejo apne sibling ke saath, which has to be cute. 9033 Mirchi par 9033647244 पर, या फिर तो मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो राइट अवे। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड फिर फोन कॉल का वेट करना मेरे।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello there, मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. Time for your gold rate update.
2: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,370. $4,370 per ounce के साथ आज सुबह गोल्ड की prices कल से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं. गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए PAMP सर्टिफाइड गोल्ड बार्स एंड सिल्वर बार्स 1 ounce, 100 ounce, किलोग्राम ऑल अवेलेबल एट Raj Jewels. गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करने के लिए RajJewels.com की टीम के साथ कनेक्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी Priscilla. मुझे कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, या फिर इंस्टोर एक्सपर्ट ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. राइट नाउ मिर्ची दर बैंगर्स के टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and Mirchi Mornings पर. Now it's time for Mirchi Avaka 3.
2: Mirchi Avaka 3.
1: सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में रह रही इंडियन वुमन वॉमिका ने बताया कि एक 5 मिनट का शावर जिसके बाद बाथरूम की स्टीम से अलेजेडली फायर अलार्म ट्रिगर हो गया और बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना पड़ा. उनके मुताबिक उन्हें अराउंड 1900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, विच इज रफली अराउंड 1300 यूएस डॉलर्स का चार्ज फेस करना पड़ा. उन्होंने कहा एग्जॉस्ट फैन ऑन करना वो भूल गई थी और ये 5 मिनट का शावर उन्हें काफी एक्सपेंसिव पड़ा है. नंबर 2 पर बैंक ऑफ अमेरिका फंड मैनेजर सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया हैज replaced Indonesia as Asia's least preferred stock market among those surveyed. India has also been among Asia's weakest performer this year, with investors pointing to factors including high valuations and concerns around reforms and AI exposure. Meanwhile, Taiwan and Japan remain the preferred markets in the survey. And lastly, Australian player Nick Kyrgios has been banned from tennis after testing positive for a metabolite during an ATP event in Mallorca. The suspension began August 4th. Kyrgios has admitted making a huge mistake, accepted responsibility and said he'll step away from public life for 28 days. And that was your Mirchi Avaka 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Follow me on Instagram and X at Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp karo 9033 Mirchi par, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: है सांबा, जिंदगी की बरसात है, आज रात है, टाइम पास है।
1: इसका बाना उसका बाना सबका बाना, मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: आकाश
2: जी,
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
2: राइट?
3: चलिए। अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा।
2: ये दूसरा क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: फिर देखिए।
3: हाँ बताइए।
2: हाँ, वो उसको सीधे गुस्सा आ गया और
3: अरे नई बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
2: आज तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया बहुत कुकड़ू को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स पर राशि जोन पार्ट वन।
2: मिर्ची राशि जोन
1: सीरीज यानी मेष राशि, आज कमिटमेंट से पहले थोड़ा सा सोच लेना भाई। रिलेशनशिप्स में वीनस का सपोर्ट चल रहा है तो लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करने का परफेक्ट टाइम है। लकी कलर फॉर यू इज पिंक, लकी नंबर इज 6। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, इमोशनल वेव्स आ सकती हैं बट योर इनर स्ट्रेंथ विल कीप यू स्टेडी। बस हीटेड आर्ग्यूमेंट से डिस्टेंस रखो थोड़ा, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, डोंट मेक इट हायर। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, कैलकुलेटेड रिस्क आज फेवर में जा सकता है तुम्हारे, लेकिन बैलेंस जरूरी है। वर्क के बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो, ब्रेन को भी पीटीओ चाहिए होता है। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, दिन थोड़ा सा बिजी या ओवरवेलमिंग लग सकता है लेकिन एक छोटू सा थॉटफुल जेस्चर एट होम विल मेक अ बिग डिफरेंस फॉर यू। लकी कलर फॉर यू इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, टेक चार्ज ब्रो, फैमिली सपोर्ट तो मिलेगा ही लेकिन रशिंग भी मिलने वाली है आज। डिसिप्लिन्ड एफर्ट इज योर सुपर पावर। लकी कलर फॉर यू इज एम्बर, लकी नंबर इज 8। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, हेल्दी रूटीन्स पर फोकस करो मेरे दोस्त, नो शॉर्टकट्स, कंसिस्टेंसी इज द रियल ग्लो अप। गूगल पे इंस्टेंट सक्सेस सर्च कर सकते हो लेकिन उसको रियल लाइफ में अपना नहीं सकते। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 5। एंड दैट वॉज जोन 1 यानी कि राशि जोन 1। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे होम।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना,
0: हिट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome back to Mirchi Mornings. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Rashi Zone Part 2.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: Libra यानी चूला राशि. Close friends या partners के साथ words carefully choose करो आज. Thoughtful communication is your biggest strength. Lucky color is rose pink. Lucky number is 7. Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि. Energy तो high है, so pending tasks जो है उनको attack करके पूरा करो. Progress slow लगे तो भी keep moving forward. Slow Wi-Fi भी eventually load कर ही देता है video. Lucky color for you is burgundy. Lucky number is 3. Sagittarius यानी कि धनु राशि. बोलने से पहले दो बार नहीं 10 बार सोचो. Especially when related

ने मकर राशि, हेल्थ और व्हाट यू आर कंज्यूमिंग दोनों पे थोड़ा सा अटेंशन पे करो. आज फ्रेश क्लीन बिगिनिंग्स के लिए परफेक्ट ट्रांजिशन है. लकी कलर फॉर यू इज फॉरेस्ट ग्रीन, लकी नंबर इज 1. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, अ चेंज ऑफ सराउंडिंग्स कुड मेक यू रीथिंक अ डिसीजन यू फेल्ट टोटली श्योर अबाउट. टेक अ क्वाइट वॉक, क्लियर योर हेड एंड देन डिसाइड. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 10. पाइसीज यानी कि मीन राशि, लिसन क्लोजली टुडे. एक पावरफुल कॉन्वर्सेशन कुड एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रोड अहेड, सो फोन साइड में रखो एंड एक्चुअली लिसन. लकी कलर इज सी फॉर्म ग्रीन, लकी नंबर इज 12. एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 2. मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में. फॉलो करो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप करना है तो नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, Mirchi Mornings का time हो चुका है. अब मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में और तुम्हारी coffee, conversation, music, थोड़ी सी मस्ती के बीच में अब clocking out भी करना पड़ेगा मुझे. लेकिन before I go, तुम्हें एक important reminder देकर जाती हूँ. Mirchi पर चल रहा है Mirchi करेगा बंधन पूरा contest. राखी आ रही है भाई. तो तुम्हारे siblings के साथ तुम्हारे जो cutest, funniest, most wholesome moments जो भी हैं तुम्हारे पास picture form में वो हमें भेजो. WhatsApp पर सबसे पहले लिखो राखी RAKHI और उसके बाद अपने क्यूटेस्ट बेस्ट सिबलिंग मोमेंट्स के पिक्चर्स भेजो 9033 मिर्ची पर, यानी कि 9033647244 पर, या फिर सिंपली मुझे डीएम करो अभी के अभी इंस्टाग्राम पर. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, एंड देन वेट फॉर माय कॉल. और अभी फिलहाल वेयर एवर यू हेडेड, नेक्स्ट ऑफिस, कॉलेज, स्कूल ड्रॉप ऑफ, या फिर बस वापस बेड पर जाने वाले हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या फिर वर्क फ्रॉम आउटसाइड कर रहे हो, एरेंड्स रन कर रहे हो, आज का दिन तुम्हारा फैबुलस रहे जैसे कि अभी तक. अभी के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड. Priscilla साइनिंग ऑफ फ्रॉम Mirchi मॉर्निंग्स. मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर. तब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिसनिंग टू Mirchi. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जीन्स पे हेलो हेलो श्रेया हाजिर हो गई है। अब जैसे ही उस जमाने के गाने सुनोगे तो उस जमाने की बातें तो याद आएंगी, और जब बातें आएंगी तो इस जमाने की श्रेया याद आएगी। हेलो हेलो वेलकम। अच्छा, आज जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे ना, वो पहली फिल्म बड़ी सारी चीजों में थी, फर्स्ट इंडियन फिल्म जो कि सबसे लंबी थी, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर मेड, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसके दो ब्रेक्स थे, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसमें राज कपूर साहब कलर में थे, यानी द फिल्म दैट ही डिड वाज इन कलर, एंड द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसने भाई यूरोप में जाकर के अपने बहुत सारे सीन्स शूट किए। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बात होगी, यानी राज कपूर साहब की संगम की बात होगी। तो बस करेंगे बड़ा सारा संगम उस जमाने के गानों के साथ। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज
1: स्पीकिंग
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओके मनीष आई नीड योर फेवर आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन राइट कि पहले इंसान एप था आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया राइट
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन राइट एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे इफ यू डोंट माइंड मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके
1: करना क्या है अभी भी नहीं समझ पा रहा
2: हूं तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर था आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए कल का रख ले मेरी बात मेरी बात सुनो आई एम प्रोफेसर मेरी बात सुनिए यार आप हेलो वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार ये नाइंसाफी है
1: हेलो
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी मेरी बात सुनिए मुझे माफ कर दो थोड़ा ज्यादा हो गया था मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार मैं मुर्गा बनाया है तुम रेडियो मिर्ची पे हो आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार मनीष वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार इंसान पहले बंदर होता था अब मेरे को यकीन आ गया मैं बता दूंगा उनको
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म संगम की बात हो रही है। वेल, ये फिल्म फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बहुत सारे मामले में थी। एक तो राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो कि लॉन्गेस्ट थी और इसमें दो एड ब्रेक्स थे, मतलब दो ब्रेक्स थे, नॉट एड ब्रेक्स, प्रॉपर ब्रेक्स थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। अब मैं ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ इसी फिल्म की। सो राज कपूर साहब ने इस फिल्म की स्टोरी ना वैजयंती माला जी को नरेट की थी और वो काफी टाइम तक उनका वेट करते रहे कि अब भाई वैजयंती माला से यस आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा कि वो ये फिल्म करना चाहती हैं, वो उनके ऑपोजिट उनकी राधा बनेंगी। लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। एक महीना, दो महीना, तीन महीने बीत गए। फिर उस टाइम पे ना टेलीग्राम चलते थे, यानी अब मैं कैसे बताऊँ, आजकल का व्हाट्सएप आप ले लो, एज इन लेटर्स जाया करते थे पोस्टकार्ड्स के थ्रू, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी मैसेज पहुँचाना होता था वो टेलीग्राम के थ्रू होता था। तो एक दिन, एक शाम को राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिखा वैजयंती माला को और उन्होंने उस टेलीग्राम में लिखा, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। क्योंकि इसमें वैजयंती माला जी का जो रोल था वो राधा कहलाना था। आगे क्या हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी आपको वापस श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

तो राज कपूर साहब ने लिख करके पूछ लिया टेलीग्राम के थ्रू, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। फिर क्या, उधर से भी टेलीग्राम आया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आज संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट फिल्म ऑफ राज कपूर साहब जो कि कलर में थी, इंडिया की पहली फिल्म जो यूरोप जाकर के शूट हुई थी। वेल, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर। ऑफकोर्स इसके बाद आई थी मेरा नाम जोकर जो और भी लंबी थी। सो मैं बात कर रही थी कि जब राज कपूर साहब ने ना इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, इस फिल्म का नरेशन अपनी हीरोइन वैजयंती माला जी को सुनाया, तो वो ही वॉज वेटिंग कि भाई अब हाँ आएगी, अब हाँ आएगी, लेकिन वैजयंती माला की कोई हाँ ही नहीं आई। 2 से 3 महीने के बाद राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिख करके भेजा। उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मूवी का नाम संगम और कैरेक्टर जो कि वैजयंती माला को करना था उसका नाम राधा। तो उधर से भी एक रिप्लाई आया टेलीग्राम के थ्रू, होगा होगा होगा। और इसी को भाई इस गाने में रखा गया, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। वैजयंती माला जी का होगा होगा होगा भी है इस गाने में। कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ये वही टाइम था जब इंडस्ट्री के तीन दिग्गज दिलीप साहब, राज कपूर साहब और देवानंद कोशिश कर रहे थे हिंदी सिनेमा में कलर लाने की। इसीलिए उनके सामने अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आ रही थी वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। एंड दैट इज व्हाई राज कपूर और देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर में सबसे पहली कलर फिल्म्स लॉन्च करी। वेल, दिस वाज द टाइम जब देवानंद पहली फिल्म which was in color under Navketan Productions guide इसको बना रहे थे and simultaneously राज कपूर साहब RK film banner के under संगम बना रहे थे। ये दोनों फिल्में almost एक दूसरे के साथ साथ रिलीज हुई थी। पुरानी जीन्स पे आज संगम की बातें चल रही हैं, तो बस कहीं भी मत जाइएगा, इस फिल्म की बातों का और इस फिल्म के गानों का संगम भी होता रहेगा यहाँ।
1: मेहरबान लिखूं

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: राज कपूर साहब ने बस ठान लिया था कि वो ना दिल्ली में जाकर के इस गाने की शूटिंग करेंगे, लेकिन उनको वो थोड़ा सा सुनसान रास्ता, वो पेड़ पौधे जिसपे वो बस चल रहे हैं गाना गाते हुए, वो लोकेशन दिल्ली में मिली नहीं रही थी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड इट इज सेड दैट द शोमैन ना हैड अ कीन नज़र। जब उनको लोकेशन चूज करनी होती थी तो वो एक से एक एग्जॉटिक लोकेशन भी कैंसिल कर देते थे अगर उनको लोकेशन में मजा ना आए तो। तो जो अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ फ्रॉम द फिल्म संगम, ये है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। इस गाने की शूटिंग के लिए राज कपूर साहब को ना एक सन्नाटे वाली सुनसान सी रोड चाहिए थी, और ऐसा चाहिए था कि बहुत सारे पेड़ पौधे हों। वो दिल्ली गए अपनी पूरी यूनिट को लेकर के, लेकिन वहाँ पे ना उनको कोई लोकेशन ही नहीं समझ में आ रही थी। आखिरी दिन जब हताश होकर के लौटने वाले थे, उनकी नज़र पड़ी एक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे, एंड देन ही सेड कि अरे बस यही तो मैं ढूंढ रहा था। स्पेशल परमिशन ली और ये गाना एक्चुअली में दिल्ली में शूट हुआ है। ये गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।
1: क्या कहा?

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान।
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
1: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
2: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है। सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
1: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
2: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें। आप एक तो जुबान संभाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है। सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
1: स्वर्गीय नहीं, तो अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
1: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, बैठा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप। मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
1: डॉक्टर बोल रहा हूँ,
2: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार। मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
1: ऐसा
2: केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
1: परिवार वाले आदमी से बात करता है, कौन है तेरी
2: बेवकूफी की बात मत करिए आप। आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
1: जी।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? सर मेरी बात सुनिए। आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है। आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं। क्या
2: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है। अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने पूरा फ्रीडम दिया दिलीप साहब को, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि दिलीप साहब इस फिल्म में उनके साथ काम करें। तो उन्होंने ये फ्रीडम दिया कि वो कोई भी रोल चूज कर सकते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ फिल्म संगम की, जो आर के फिल्म की फर्स्ट कलर फिल्म भी बनी। सो राज कपूर साहब वॉन्टेड टू वर्क विद दिलीप साहब, ही रियली वॉन्टेड कि वो किसी तरह इस फिल्म में आ जाए। तो उन्होंने ना उनको ऑप्शन दिया था कि वो रोल भी चूज कर सकते थे जो राज कपूर साहब का था, और वो रोल भी चूज कर सकते थे जिसमें बाद में राजेंद्र कुमार आए। दिलीप साहब का कई महीनों तक का हाँ का वेट करते करते जब वो एक दिन दिलीप साहब से मिलने गए, तो दिलीप साहब ने उनको साफ साफ पता है क्या कहा कि वो राज कपूर के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि दिलीप साहब ने कहा कि तुम्हारी फिल्म है और इसमें पूरी लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे, यू आर द शोमैन। फिर ये रोल गया राजेंद्र कुमार को, लेकिन एक बैकअप प्लान भी था। क्या था बताऊंगी आपको, श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

फिरोज खान ना एंड तक बस ये होप करते रहे कि शायद शायद शायद ऊपर वाले प्लीज राजेंद्र कुमार इस रोल के लिए मना करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, इंडिया की पहली फिल्म जो कि यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म। सो मैं बता रही थी कि इसमें जो रोल किया है राजेंद्र कुमार ने, वो रोल सबसे पहले दिलीप साहब को गया था, लेकिन दिलीप साहब ने राज कपूर साहब को ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई सारा लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे बिकॉज यू आर द शोमैन। फिर उसके बाद ये रोल गया राजेंद्र कुमार को। अब राजेंद्र कुमार जब तक यस कहते तब तक राज कपूर साहब को अप्रोच किया उनके दोस्त फिरोज खान ने, और फिरोज खान का बेहद मन था टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एवरीबडी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ आरके फिल्म्स। तो क्या हुआ, हुआ ये कि भाई राज कपूर साहब ने उनको प्रॉमिस किया कि अगर राजेंद्र कुमार मना कर देंगे तो ये रोल फिरोज खान करेंगे। अब भाई राजेंद्र कुमार ने मना नहीं किया और फिरोज खान का वो सपना टू बी अ पार्ट ऑफ राज कपूर फिल्म्स वो सपना ही रह गया। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें यानी संगम की बातें विद मी श्रेया। और हाँ, अगर मुझसे कुछ अलग से पर्सनल बात करनी हो तो फेसबुक और इंस्टा पे तो मैं हूँ ही, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

इस खत को गाने में बदला था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम। सो हसरत जयपुरी साहब, शंकर जयकिशन जी, ये इनकी टीम थी, गाने बनाया करते थे। शंकर जयकिशन जो थे वो गाने कंपोज करते थे और हसरत जयपुरी गाने लिखा करते थे। राज कपूर साहब की फिल्मों में या तो हसरत साहब गाने लिखते थे या फिर शैलेंद्र जी। सो हुआ ये कि हसरत साहब का आर्ग्यूमेंट हुआ शंकर जयकिशन जी से एंड इसकी वजह से ना इन लोगों में काफ़ी लंबे अरसे तक बात नहीं हुई। अब क्या हुआ, हसरत साहब ने एक दिन ख़त निकाला और वो अल्फाजों के धनी तो थे ही। उन्होंने उस ख़त पे लिखा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। और जैसे ही शंकर जयकिशन जी ने ख़त पढ़ा, फटाक से हसरत साहब को गले लगा लिया। वेल, इसी खत को फिर गाने में तब्दील किया गया, संगम का द फेमस सॉन्ग ये मेरा प्रेम पत्र बाय रफ़ी साहब। ये गाना मैं आपको ऑलरेडी सुना चुकी हूँ, तो एक और रफ़ी साहब का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब इसी फिल्म से एडिटर भी बने थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ मूवी का नाम है संगम, जो आरके फिल्म्स की पहली कलर फिल्म थी। इस फिल्म को एडिट भी करने वाले थे राज कपूर साहब, एंड इसके बाद उन्होंने अपनी सारी फिल्मों को एडिट किया, फिर चाहे वो मेरा नाम जोकर हो या फिर बॉबी हो। तो इसी फिल्म संगम का बड़ा खूबसूरत गाना है आपके लिए हर दिल जो प्यार करेगा। अप नेक्स्ट

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: आकाश
3: जी,
4: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
3: हाँ, बिल्कुल।
4: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
3: मेरी गर्लफ्रेंड है।
4: ओहो, यही मिली है आपको?
3: जी, बहुत पंगे लेती है।
4: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
3: ठीक है,
4: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
3: आकाश मल्होत्रा।
4: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
3: राइट?
4: चलिए। अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
3: जी, डेफिनेटली।
4: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
3: अच्छा,
4: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
3: क्या कह रहे हैं?
4: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
3: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
4: नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली है तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा, है ना?
3: फिर देखिए,
4: हाँ बताइए।
3: हाँ, वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया और
4: अरे नहीं, बात सुनिए, गुस्सा आपको
3: आज प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
4: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
3: जी,
4: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ों को। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
3: मेरा बन गया कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुंबई के फेमस सिनेमा हॉल का नाम संगम रख दिया गया था। अंधेरी ईस्ट में है आज भी ये फेमस सिनेमा हॉल जिसका नाम है संगम। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड इस हॉल के जो ओनर्स थे ना देवर टंडन फैमिलीज एंड देवर ह्यूज फैन ऑफ राज कपूर साहब। राज कपूर साहब जब अपनी फिल्मों को लॉन्च करते थे तो बस इसी हॉल में ना प्रीमियर्स भी होते थे, तो राज साहब खुद भी जाया करते थे। ये पूरी फैमिली राज साहब की द शोमैन की इतनी बड़ी फैन थी कि आफ्टर द फिल्म संगम दे एक्चुअली नेम्ड देयर हॉल एज संगम। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ इसी फिल्म की नॉन स्टॉप बातें चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना। और हाँ, अगर श्रेया से वन टू वन बात करनी है, इस आवाज के पीछे भी जो चेहरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा ऑन फेसबुक और इंस्टा, RJ श्रेया विद लव। दैट्स RJ SHRUYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सारी कास्ट एंड क्रू ओवर एक्साइटेड थी कि उनको इंडिया के बाहर वो भी यूरोप जाने का मौका मिल रहा है, और इंडियन ऑडियंस इसलिए एक्साइटेड थी कि उनको बड़े पर्दे पर यूरोप दिखेगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी शॉट इन यूरोप, और इसके लिए ना राज कपूर साहब है वैजंती माला को एंड राजेंद्र कुमार को, खुद को और भी कास्ट एंड क्रू के करीब 10-15 लोगों को बाहर यूरोप लेकर के गए थे। ये पहली इंडियन फिल्म थी जो बाहर जाकर के शूट हुई थी, और वो भी यूरोप में शूट हुई थी। सो इंडियन ऑडियंस में ना ऑलरेडी बाय वर्ड ऑफ माउथ ये स्प्रेड हो चुका था कि इसमें तो फॉरेन भी है। तो कहते हैं कि संगम को देखने ना लोग फैमिली भर भर के आई थी और बार बार आ रही थी। इतना मेजर क्रेज हुआ कि अंधेरी का एक सिनेमा हॉल था और उसकी जो टंडन फैमिली, एज इन द ओनर्स वर द टंडन फैमिली, उन्होंने अपने हॉल का नाम रख दिया था संगम हॉल, जो आज भी संगम हॉल के नाम से फेमस है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

चले। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, यानी गाड़ी में बैठोगे एंड वी विल हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो किसी से इतना प्यार करते हैं कि वो जहाँ जहाँ रहते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाते हो, चाहे फिजिकली हो ना हो, मेंटली उनके साथ होते हो। और जिस भी सिचुएशन में वो बंदा होता है ना, उनको एनकरेज करते ही रहते हो, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई साया है तो उसे ना हमेशा पकड़ के जकड़ के रखो। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना एंड गुड नाइट।

0: यार श्रेया घोषाल की आवाज ने तो इस गाने में चार चांद लगा दिए हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप और मिर्जापुर द मूवी से पहला गाना आया है। ऑल्दो आपने और मैंने इस गाने को सीरीज में भी देख सुन रखा है, बट एक्चुअली उस गाने में सिर्फ और सिर्फ एक आवाज थी, दैट इज रोमी की आवाज। गाने को कंपोज किया था आनंद भास्कर ने, लिरिक्स थे गिनी दीवान के। बट अब जब उस सीरीज के ट्रिमेंडस सक्सेस के बाद ये फिल्म आ रही है, देन एवरीथिंग अराउंड इट इज रोलिंग आउट रियली ब्यूटीफुल। ये बात और है कि मूवी गलत लेवल पे गोर है भाई। सो या द सॉन्ग इज वारू फॉरएवर, जिसमें रोमी के साथ इस बार श्रेया घोषाल की भी आवाज है, ब्रिंगिंग अ न्यू डायमेंशन टू द मच लव्ड ट्रैक। बाकी अगर आपने कालीन भैया, गुड्डू, बबलू, मुन्ना, गोलू इन सब की कहानी सीरीज में नहीं देखी है तो ब्रो प्लीज देख डालो, यू विल डेफिनेटली नॉट रिग्रेट इट। क्योंकि मैंने लास्ट वीकेंड पे यही बिंज वॉच किया है एंड नाउ आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर द मूवी, डायरेक्टेड बाय गुरमीत सिंह, जो रिलीज हो रही है ऑन द 4th of September। ये बात और है कि बबलू के किरदार में मैं जितेंद्र कुमार को उतना कुछ खास डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल, बट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई मूवी जब आए तो स्क्रीन पे उनको देख के मुझे मजे भी आए। बाकी 1 से 10 के स्केल पे आप किस लेवल पे एक्साइटेड हैं अबाउट द मूवी, डू लेट मी नो अबाउट इट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।
3: जो हाँ।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान.
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
1: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ.
2: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
1: दिमाग खराब है. अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तो सोच कम से कम.
2: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान सवाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
1: स्वर्गीय नहीं, तो अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
2: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
1: स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई. बैठा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराइए. बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
1: डॉक्टर बोल रहा
2: हूँ. मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
1: ऐसा
2: केस हम क्या करेंगे? केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले.
1: परिवार वाले आदमी से बात करता है कौन है?
2: बेवकूफी की बात मत करिए आप. आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
1: जी
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
1: मेरी बात सुनिए.
2: आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
1: बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं.
2: सर मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
3: अब मिर्ची खा.
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। पता नहीं आपने अभी तक मुसाफिर काफी नेटफ्लिक्स पे देखी या नहीं, बट एक्चुअली आपको देखनी चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी वो सीरीज निकल के आई है दैट करण जौहर ने इसी सीरीज के डायरेक्टर रुचिर अरुण के साथ टीम अप किया है फॉर दिस न्यू धर्मेटिक सीरीज। आवारापन 2 इज नॉट जस्ट मेकिंग अ बज इन इंडिया बाबू मोशाय, ओवरसीज में भी हमारे इमरान हाशमी छाए हुए हैं क्योंकि वहां इस फिल्म ने अलग लेवल का वेव क्रिएट किया है। ऑलरेडी 19.31 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है मूवी, एंड नॉट जस्ट दैट, इमरान हाशमी की अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है। इनफैक्ट जो ओरिजिनल आवारापन थी ना, उसकी टोटल अर्निंग्स को इस फिल्म के एडवांस बुकिंग्स ने ही पीछे छोड़ दिया था। येट अनदर रीजन टू वॉच द मूवी इन द थिएटर्स। कार्तिक आर्यन अब प्रोड्यूसर बन चुके हैं भाई। हाँ जी, उन्होंने डोपामिन स्टूडियोज नाम से अपना ये प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है और इसी के साथ ही हैज जॉइन डायरेक्टर कबीर खान की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा एज अ प्रोड्यूसर। इसके पहले कार्तिक आर्यन ने एज एन एक्टर कबीर खान के साथ चंदू चैंपियन किया था, जिसके लिए दोनों को नेशनल अवार्ड भी मिला। तो बस सोच लीजिए कि ये जोड़ी वापस आएगी तो क्या ही कमाल दिखाएगी। फिलहाल तो कमाल की फिल्मी बातें और भी बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स ऑन।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम सेक्शन में अपना नंबर भेजना होता है, देन आई गिव यू अ कॉल और फिर हम इस गेम की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे कौन है?
1: रोहन
0: जी। तो चलिए आपके साथ आज के गेम की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल एक डायलॉग है, आपको बताना है किस फिल्म का डायलॉग है, ठीक है?
1: ठीक है जी।
0: यहाँ से बहुत दूर सही और गलत के पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे, किस मूवी का डायलॉग है?
1: रॉकस्टार। रॉकस्टार
0: बहुत ही उम्दा। रॉकस्टार में जेजे का रोल किसने प्ले किया है?
1: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर किस फिल्म में एलियन का कैमियो करते हैं?
1: पीके।
0: वाह वाह, पीके में दूसरे गोले से कौन आता है?
1: आमिर खान।
0: आमिर खान अपने दोस्तों के साथ गोवा किस फिल्म में जाते हैं? आवाज कट रही है।
1: दिल चाहता है
0: में समीर हवा का झोंका कौन है?
1: सैफ अली खान
0: प्रोफेसर के रूप में टेररिस्ट किस फिल्म में बने हैं?
1: प्रोफेसर के रूप एक सेकेंड
0: टिक टिक वन
1: फैंटम
0: नहीं गलत जवाब दिया।
1: सैफ अली खान बने हैं।
0: हो गया सर, अब इसके आगे हम नहीं खेलेंगे आपसे, चीटिंग नहीं कर सकते हैं हम।
1: अरे मैडम एक पॉइंट देना
0: चाहिए। अरे सर नहीं सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, हैव अ ग्रेट डे।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू।
0: बट इतना अच्छा जो आपने एफर्ट डाला है उसके लिए आपको ये टैग तो जरूर दूंगी मैं।
2: मिर्ची फिल्म जी।
0: तो भाई अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो अगले मिर्ची फिल्मची बनने के लिए यू ऑलरेडी नो कि आपको क्या करना है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अरे अरे, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची वाला गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार, जिसमें आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज सबसे पहले हमारे साथ थे टेलीफोन लाइन पे रोहन, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ हैं अनिल जी। तो मेरा सवाल वही है सर कि सैफ अली खान प्रोफेसर के रूप में टेररिस्ट किस फिल्म में बने?
3: कुर्बान।
0: कुर्बान में वो किसको अपने प्यार में फंसाते हैं?
3: करीना कपूर।
0: करीना की फिल्म जिसमें वो लड़कों के साथ डेट पे जाने के पहले उनको रेटिंग देती है।
3: कभी खुशी कभी गम।
0: कभी खुशी कभी गम में वास को गमला कौन बोलता है?
3: काजोल।
0: यस, आपको उनका वो वाला सीन याद है, गमला टूट गया।
3: यस यस।
0: ओके, काजोल की फिल्म जिसमें वो मर्डरर बनी है?
3: गुप्त।
0: बहुत बढ़िया। गुप्त में एक गाना है, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। किसका दिल अकेला है?
3: बॉबी देओल।
0: बहुत बढ़िया। बॉबी देओल की फिल्म जिसमें वो प्रोफेशनल किलर बने हैं?
3: बिच्छू।
0: बिच्छू की फीमेल लीड कौन है?
3: रानी मुखर्जी।
0: रानी मुखर्जी किस फिल्म में अपनी 8 साल की बेटी को उसके पापा के लिए अंजलि ढूंढने के लिए बोलती है?
3: कुछ कुछ होता है।
0: कुछ कुछ होता है में अंजलि की अरेंज मैरिज किससे तय होती है?
3: सलमान खान।
0: बहुत बढ़िया। सलमान खान की फिल्म जिसमें वो अपना चश्मा शर्ट के पीछे लगाते हैं?
3: दबंग।
0: दबंग में किसको थप्पड़ से डर नहीं प्यार से लगता है?
3: सोनाक्षी सिन्हा।
0: सोनाक्षी सिन्हा की किस फिल्म में साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा ये वाला डायलॉग है?
3: आर राजकुमार।
0: ग्रेट सर, आपने तो एकदम घोल के पी रखा है बॉलीवुड को। ओके, अगला सवाल है, आर राजकुमार में रैम्बो कौन है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की फिल्म जिसमें उनको इंसोम्निया होता है?
3: शानदार शानदार।
0: बहुत बढ़िया। वैसे आपने भी एकदम शानदार गेम खेला है, तो इसी के साथ आपको भी ये टैग जरूर दूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: आज के मिर्ची फिल्मची में सिर्फ इतना ही, बट बाकी की बॉलीवुड गपशप अभी जारी रहेगी। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स ऑल।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Burka, burka. Na fiat bala burka. Mirchi, burka.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
2: स्पीकिंग,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
3: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मुझे लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: from a damsel in distress to a powerful queen.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनों का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अक्सर हमने हमारे हीरोइंस को प्यार करते, रोते और हीरो का इंतजार करते तो बहुत देखा है। लेकिन जब ये हीरोइंस खुद सवाल करती हैं, सिस्टम से लड़ती हैं और जरूरत पड़ने पर रिवेंज भी लेती हैं, तब कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आज मेरे पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं ऐसी ही कुछ पांच फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें द फीमेल प्रोटैगनिस्ट टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी सिस्टम मिडनाइट। अब नंबर दो पे बात करते हैं NH10 के बारे में, जो रिलीज हुई थी साल 2015 में। नवदीप सिंह की हार्ड हिटिंग थ्रिलर स्टारिंग अनुष्का शर्मा एंड नील भूपलम। माइंड यू, इस फिल्म को अनुष्का ने प्रोड्यूस भी किया था, दस मेकिंग हर प्रोडक्शन डेब्यू एज वेल। कहानी एक रोड ट्रिप की जो अचानक से टेरिफाइंग नाइटमेयर बन जाता है। NH10 में अनुष्का शर्मा एज मीरा एक वायलेंट इंसिडेंट के बाद सर्वाइवल के लिए फाइट करती हैं। ये फिल्म ऑनर किलिंग, पेट्रियार्की और रूरल पावर स्ट्रक्चर्स को ब्रूटली एक्सप्लोर करती है, जहां मीरा का कैरेक्टर विक्टिम बन के रुकता नहीं बट फाइट बैक करता है। चलो लिस्ट में नंबर तीन पे अब बात करना चाहूंगी अबाउट द फिल्म मॉम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय रवि उदयावर, विच इज अ रिवेंज थ्रिलर स्टारिंग श्रीदेवी मैम, सजल अली, अक्षय खन्ना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माइंड यू, ये फिल्म श्रीदेवी मैम की 300th फिल्म थी और इसी के साथ उन्होंने अपने सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत की थी इन दी इंडस्ट्री। कहानी का बैकड्रॉप फेल जस्टिस सिस्टम को दिखाता है, जब इन सारी चीजों से परेशान होके एक माँ खुद जस्टिस बन जाती है। फिल्म मॉम में श्रीदेवी अपनी स्टेप डॉटर के सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उन गुनहगारों को सजा दिलाने के मिशन पर निकलती हैं। इन शॉर्ट, फिल्म का कोर है अ मदर्स लव, रेज एंड फाइट फॉर जस्टिस। तो बाबू मोशाय, अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी, देन डेफिनेटली यू शुड पुट इट इन योर वॉच लिस्ट। एंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अपने आसपास के मर्दों को स्पेसिफिकली ये फिल्में जरूर दिखाएं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अब से कुछ ही देर में ऐसी ही दो और फिल्मों की बातें होंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: जब एक औरत के साथ इनजस्टिस हो तो उसको क्या करना चाहिए?
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए, उसको एक प्रॉपर रूट लेना चाहिए टू गेट जस्टिस। बट अगर जस्टिस सिस्टम ही उसको फेल करती जाए तो फिर क्या? क्या वो चुप रहेगी, सिस्टम का वेट करेगी, या खुद अपनी जस्टिस की फाइट लड़ेगी? वेल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस सवाल का जवाब हमें कई पावरफुल थ्रिलर्स के जरिए दिया है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जहाँ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट सिस्टम मिडनाइट, उसके बाद NH10, देन मॉम, और अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी बुलबुल। साल 2020 में अन्विता द डायरेक्टोरियल ये गॉथिक पीरियड हॉरर फिल्म आई, स्टारिंग तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी एंड राहुल बोस एज लीड्स। सेट इन द 1880s बंगाल, बुलबुल नाम की एक चाइल्ड ब्राइड एक ओप्रेसिव वर्ल्ड में ग्रो करती है और इवेंचुअली अपनी एजेंसी और पावर रिक्लेम करती है। वैसे फिल्म की डायरेक्टर साहिबा ने इसको एक फेमिनिस्ट फेरी टेल भी कहा था, जहां सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू एक औरत के पेन और रेश को एक्सप्लोर किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म नो वन किल्ड जेसिका, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता। इसमें विद्या बालन, रानी मुखर्जी और मायरा कर्ण लीड रोल्स में थे। सो एक मर्डर हुआ जिसके विटनेसेस थे, एविडेंस भी था, फिर भी जस्टिस इतना डिफिकल्ट क्यों था? वेल, नो वन किल्ड जेसिका जेसिका लाल मर्डर केस से इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर है, जहां विद्या बालन प्लेज जेसिका सिस्टर सबरीना लाल, वहीं रानी मुखर्जी ने जर्नलिस्ट मीरा गेटी का रोल प्ले किया है। फिल्म में मीडिया पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जस्टिस सिस्टम के फेलियर्स को हाईलाइट किया गया है, एंड इट शोज हाउ अ वुमन्स फाइट कैन बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। तो मेरे फेमिनिस्ट फिल्मों वाली पांच का पंच की लिस्ट में

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना
2: हिट, हिट, हिट, हिट, हिट गाना

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। पता नहीं आपने अभी तक मुसाफिर काफी नेटफ्लिक्स पे देखी या नहीं, बट एक्चुअली आपको देखनी चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी वो सीरीज निकल के आई है दैट करण जौहर ने इसी सीरीज के डायरेक्टर रुचिर अरुण के साथ टीम अप किया है फॉर दिस न्यू धर्मेटिक सीरीज। आवारापन 2 इज नॉट जस्ट मेकिंग अ बज इन इंडिया बाबू मोशाय, ओवरसीज में भी हमारे इमरान हाशमी छाए हुए हैं क्योंकि वहां इस फिल्म ने अलग लेवल का वेव क्रिएट किया है। ऑलरेडी 19.31 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है मूवी, एंड नॉट जस्ट दैट, इमरान हाशमी की अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है। इनफैक्ट जो ओरिजिनल आवारापन थी ना, उसकी टोटल अर्निंग्स को इस फिल्म के एडवांस बुकिंग्स ने ही पीछे छोड़ दिया था। येट अनदर रीजन टू वॉच द मूवी इन द थिएटर्स। कार्तिक आर्यन अब प्रोड्यूसर बन चुके हैं भाई। हाँ जी, उन्होंने डोपामिन स्टूडियोज नाम से अपना ये प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है और इसी के साथ ही हैज ज्वाइन डायरेक्टर कबीर खान की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा एज अ प्रोड्यूसर। इसके पहले कार्तिक आर्यन ने एज एन एक्टर कबीर खान के साथ चंदू चैंपियन किया था, जिसके लिए दोनों को नेशनल अवार्ड भी मिला। तो बस सोच लीजिए कि ये जोड़ी वापस आएगी तो क्या ही कमाल दिखाएगी। फिलहाल तो कमाल की फिल्मी बातें और भी बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: शाम

दोस्तों मिडवीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिडवीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज़्यादा चाय पीता है और सबसे ज़्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिडवीक में ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज़ भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिडवीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिडवीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: आकाश
3: जी।
4: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
3: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
4: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
3: मेरी गर्लफ्रेंड है।
4: ओहो यही मिली है आपको?
3: जी जी बहुत पंगे लेती है।
4: अच्छा आकाश ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
3: ठीक है।
4: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
3: आकाश मल्होत्रा।
4: अच्छा आकाश मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
3: राइट, बिल्कुल।
4: चलिए अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
3: जी, डेफिनेटली।
4: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
3: अच्छा,
4: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
3: क्या कह रहे हैं?
4: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
3: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा भी होता है?
4: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा, है ना?
3: फिर देखिए।
4: हाँ बताइए।
3: फन की बात अलग है, हाँ, वो उसको सीधे गुस्सा आ गया। और
4: अरे नई बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
3: आज तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
4: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
3: जी,
4: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ुकू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
3: मेरा बन गया वो कुकड़ुकू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

एक फ्रीडम ऐसी भी जो किसी कैलेंडर पे नहीं लिखी होती। शम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो फ्रीडम है जो मन करे वो पहनने की फ्रीडम। याद है वो टाइम जब फैमिली फंक्शन से पहले मम्मी बोलती थी कि ये पहन लो ये अच्छा लगेगा, और हमारा जवाब होता था नहीं मुझे तो वो पहनना है, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज पहनने का भी एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि स्टाइल शायद हमारी पर्सनालिटी का सबसे फन एक्सप्रेशन होता है, और हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, कभी ट्रेडिशनल कभी मॉडर्न कभी सिंपल और कभी फुल मेन कैरेक्टर मोड। और इस आजादी सीजन अपनी स्टाइल को चूज करने की फ्रीडम को इडन रो भी सेलिब्रेट कर रहा है। अगस्त 6 से 16 तक एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन वुमेन एंड किड्स, और फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल द फ्रेग्रेंसेस। विजिट देयर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक न्यू जर्सी या नेशन वाइड शॉप कीजिए एट us.edenrobe.com। ईडन रोप, अ लीगसी ऑफ स्टाइल। और दोस्तों, अगर आपकी पर्सनालिटी एक बॉलीवुड कैरेक्टर होती तो कौन सी होती जरूर बताना। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और फिर एक ऐसा गाना उस मेन कैरेक्टर एनर्जी के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

डेट नाइट का एक्साइटमेंट ना दोस्तों रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद नहीं, थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और प्लान चाहे हफ्तों पहले बने हो या शाम को अचानक डिसाइड हुआ हो, रेडी होते वक्त मूड ना ऑटोमेटिकली थोड़ा चेंज हो ही जाता है। फेवरेट आउटफिट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, फेवरेट फ्रेग्रेंस और सबसे इम्पॉर्टेंट वो फीलिंग कि आज रूटीन से कुछ अलग होने वाला है। और ऑनेस्टली चाहे सालों पहले की रिलेशनशिप हो या नई नई डेटिंग, कभी कभी ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं जो एक सिंपल से डिनर को भी ना थोड़ा स्पेशल बना देते हैं। तो अगर आजकल आपके कैलेंडर में भी ऐसी कोई इवनिंग आ रही है तो उसे थोड़ा और ड्रेसअप करने का एक बहाना तनिष्क भी दे रहा है। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स विद अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, 0% डिडक्शन on exchange of old gold above 18 carat. Terms and conditions apply. So, aaj hi visit kijiye Tanishq store at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey and add the diamond glam to your love story. Usi ke saath mujhe zarur bataiye ki aapka ultimate date night Bollywood song kaun sa hai. DM me on Insta at RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI, aur chaliye mere romantic playlist ka ye agla gana right here on Mirchi. It's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों मिड वीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिड वीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज़्यादा चाय पीता है और सबसे ज़्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिड वीक में ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज़ भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिड वीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिड वीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vieta la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान.
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ.
3: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
2: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम.
3: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान से बाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
2: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
3: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
2: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई. मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
2: डॉक्टर बोल रहा हूँ.
3: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
2: ऐसा केस
3: हम क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है. कौन है?
3: खुशी की बात मत करिए आप. आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
2: जी,
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
2: तेरा दिमाग खराब हो गया.
3: सर मेरी बात सुनिए. आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं.
3: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. मिर्ची फ्रेश माल.
5: लव, लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून.

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: दोस्तों अपग्रेडेड रहना भी ना कितना जरूरी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अपग्रेड्स तो यार हर जगह जरूरी है, फिर चाहे वो फोन को सिक्योर रखने के लिए एप्स अपग्रेड करना हो, या फिर जॉब में रेलेवेंट रहने के लिए स्किल सेट अपग्रेड करना हो, या फिर अपनी आइडियल लाइफ स्टाइल बनाने के लिए करंट लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना हो। बिकॉज विद टाइम गोल्स एंड ड्रीम्स डू चेंज। और ऐसे ही अगर आपके ड्रीम होम को भी अपग्रेड करना हो और आप सोच रहे हो कि क्या सेकेंड लोन पॉसिबल है या फिर क्या रीफाइनेंसिंग पॉसिबल है, तो लैंड मॉर्गेज हैज आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। इफ यू आर अ फर्स्ट होम बायर और यू आर लुकिंग फॉर रीफाइनेंसिंग और अ सेकेंड लोन, देन वी हैव विद अस आवर फ्रेंड बीश टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो चलिए सुनते हैं बीश का क्या कहना है। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर बॉलीवुड रोमांस का एक ड्रीमी वॉलपेपर होता तो बैकग्राउंड में ये गाना जरूर होता, सूरज हुआ मध्यम। कभी खुशी कभी गम का ये ट्रैक प्योर लव का स्लो मोशन वर्जन है। जी हाँ, सोनू निगम की स्मूथ वॉइस जैसे सनसेट और अलका जी की आवाज़ जैसे उस सनसेट के ब्यूटिफुल कलर्स, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और काजोल, मतलब रोमांस का एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जी हाँ, अगर आज मूड थोड़ा ड्रीमी है तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ड्रीमी म्यूजिक जोड़ी कौन सी है, टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR, क्योंकि यार बजाते उनके भी गाने यहां पर। फिलहाल आपके लिए सूरज हुआ मध्यम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं पर सीधा दिल को टच कर जाते हैं। रिफ्यूजी का पंछी नदियां पवन के झोंके, ये एक ऐसा गाना है जो सफ़र जैसा लगता है, क्योंकि उसमें सोनू निगम की आवाज़ यानी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रॉ, जैसे खुला आसमान, और अलका जी की आवाज़ यानी सॉफ्ट सूदिंग, जैसे हल्की सी हवा। और स्क्रीन पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की इनोसेंस और ये मेलोडी यानी प्योर मैजिक। तो चलिए थोड़ा सा सिंपल प्यार फील करते हैं सोनू निगम और अलका जी की इस अनोखी जोड़ी के साथ फॉर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। लेकिन दोस्तों आप ही बताना कि कौन सा गाना है जो आपको इंस्टेंटली काम कर देता है, स्पेशली इस पावरफुल म्यूजिकल डुओ का, सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का। तो चलिए फिलहाल पंछी नदियां सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burca, burca. La virtua la burca. Mirchi, burca.
2: Hello.
3: Could I speak to Manish, please?
2: Speaking.
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन.
2: ओके,
3: राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
3: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया. मैं बता दूंगा उनको.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

संगीत ने बना दिए एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक में हमारी भी बहुत सारी ऐसी फेवरेट जोड़ियां हैं जो यार इतने धमाकेदार गाने हमें दे चुके हैं। और उन्हीं में से एक है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की जोड़ी। और यार उनके कुछ गाने सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इंटेंस और फिल्मी और फुल पैशन वाले भी है, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का, बनके तेरा जोगी। ये गाना प्योर जुनून वाला, प्यार वाला गाना है ये। जी हाँ, सोनू निगम की पावरफुल आवाज़, जैसे कि फुल ऑन कमिटमेंट, और अलका याग्निक जी की आवाज़ उस कमिटमेंट को सॉफ्टनेस देती हुई। और जब स्क्रीन पे शाहरुख खान और जूही चावला का प्लेफुल रोमांस दिखता है तो यार ये गाना ना और भी ज़्यादा अलाइव हो जाता है। तो अगर आपको भी वो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाला इंटेंस प्यार पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा गाना आपका फुल्ली फिल्मी लव डिफाइन करता है। टेल मी ऑन इंस्टाटार मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक के पावरफुल कपल का, यानी सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का, बन के तेरा जोगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot. Mirchi, fresh maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका USA फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहाँ हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेंस वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज इन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैक लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है माइलस्टोन एल्बम दिल चाहता है के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2001 में और जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री का साउंडस्केप ही चेंज कर दिया। डायरेक्टेड बाय शंकर एहसान लॉय, जिन्होंने यार अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, डिड गेरो डू आयरिश इन्फ्लुएंसेस के साथ में इस ट्रायो का यूथफुल लिरिक्स ने इस एल्बम को सुपर डुपर हिट बना दिया था। और इतना ही नहीं, बीबीसी एशिया के टॉप 40 में इंक्लूड किया था एज अ ट्रेंड सेटर एल्बम। और मुझे तो लगता है कि अगर कंटेम्पररी वाइब आज भी चाहिए ना, तो ये एल्बम कटिंग एज था, विच वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। 2001 में आया था, लेकिन 2025 में भी आज भी इसके गानों पर ट्यून इन कर सकते हो। तो आप भी मुझे बताइए विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिल चाहता है एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और कहीं ना जाइए क्योंकि इस एल्बम के गानों के बारे में बहुत ही खास बातें करने वाले हम आज राइट हियर ऑन द शो। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए ले चलते हैं आपको 2001 में, जब बदल चाहता है रिलीज हुई थी। और यार वो सिर्फ फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू ही नहीं थी, लेकिन एक ऐसा एल्बम बन गया था, एक ऐसा साउंड ट्रैक बन गया था जो टाइमलेस था। और शंकर एहसान लॉय का ये जो साउंड ट्रैक था, उसने धमाका किया था, स्पेसिफिकली विद द टाइटल ट्रैक दिल चाहता है। क्योंकि यार दिल चाहता है सुनते ही ना दिमाग में गोवा के क्लिफ्स, रोड ट्रिप्स और केयर फ्री दोस्ती ना फ्लैश हो जाती है। और ये सॉन्ग वैसे तो सिडनी के बूंदी बीच और चपोरा फैट गोवा, इन दोनों लोकेशंस पे शूट हुआ था। लेकिन ये इकलौता गाना ऐसा है जिसके वजह से गोवा टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था, क्योंकि इतने सारे दोस्तों ने प्लान कर लिए थे कि यार चलो गोवा चलते हैं। हाँ, कुछ प्लान सक्सेस हुए थे, कुछ प्लान फेल हुए थे, लेकिन प्लान तो सब ने बनाए थे। तो जी हाँ, ये सिर्फ एक गाना नहीं, लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बन चुका था, लिव फ्री लव रियल एंड लव लाउडर। तो चलिए आपके लिए प्ले करते हैं दिल चाहता है। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए गोवा की यादें ताज़ा करते हैं विद दिस song dil chahta hai right here on Mirchi, it's hot.
1: Mirchi iska bana uska bana sakka bana murga murga nabiyat wala murga Mirchi murga.
2: Hello
3: hello, ye swargiya anil chauhan ke yahan se bol rahe hain bhai sahab?
2: Kiske yahan se?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान।
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
3: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है सर, मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से।
2: हाँ।
3: तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
2: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
3: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें, आप एक तो जुबान सवाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
2: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप। नहीं, मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
2: डॉक्टर बोल रहा हूँ,
3: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
2: केस करूंगा,
3: केस हम क्या करेंगे, केस तो मैं उन पे करूंगा स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है, कौन है तेरी
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप। आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
2: जी।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
2: तेरा दिमाग खराब हो गया।
3: सर मेरी बात सुनिए, आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
3: सर मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। विद मिर्ची, फ्रेश माल,
4: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कोई भी कुछ भी कह ले, अगर कोई भी ऑफिस पार्टी हो और डीजे ने अगर कोई कहे नहीं बजाया तो इज दैट पार्टी इवन अ पार्टी? जी हाँ, कोई कहे कहता रहे फ्रॉम दिल चाहता है आज का बस टॉपिक और आज का बस सॉन्ग, क्योंकि दिल चाहता है 2001 में जो रिलीज हुई थी सुपर डुपर हिट एल्बम थी, विच वॉज कम्पोज बाई शंकर एहसान लॉय। और इसी का एक सुपर डुपर हिट गाना विच इज कोई कहे कहता रहे, जो हर पार्टी की जान बन गया था यार। वैसे तो यार इस सॉन्ग की एनर्जी ऐसी थी कि शूट के दौरान भी पूरा का पूरा क्रू डांस ही कर रहा था, एंड दैट टू ऑफ कैमरा। तब फरहान अख्तर ने बोल दिया था यार, दिस वॉज द ओनली सॉन्ग वेर वी डिंट नीड बैकग्राउंड डांसर, क्योंकि सब खुद ही ग्रूव करने लगे थे। तो यार मूड अगर लो हो या वीकेंड वाइब चाहिए तो ये गाना इज द अल्टीमेट पिक मी अप काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आपका भी अगर फेवरेट गाना है ये तो मुझे ज़रूर बताइए, या फिर ये जो क्लासिक आइकॉनिक एल्बम है विच इज दिल चाहता है उसका आपका फेवरेट गाना कौन सा है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए ये अगला गाना कोई कहता रहे राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2001 के एल्बम की, दिल चाहता है कि, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम रेशमा हिंगे जो कि रहती है एडिसन में। यार इनको जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तब जब ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, तब यार लगता ही नहीं था कि ये गाना है। मतलब लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और प्रीति जिंटा ने एक बहुत ही प्यारा सा मोनोलॉग बोला था इस गाने के जस्ट थोड़ी देर पहले कि यार लव तो लॉजिकली होता है ना, मतलब लव में थोड़ी ना लॉजिक यूज़ होता है। तो कुछ ऐसा ही कहना है रेशमा हिंगे का भी, वो भी यही एग्री करती है प्रीति जिंटा के जो भी इन गाने के बोल है उनके साथ कि यार लव तो दिल से होता है, लव थोड़ी ना लॉजिकल होता है। तो जी हाँ, चलिए ये गाना बजाते हैं रेशमा जी के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट अनदर एल्बम, हिट एल्बम जो यार बहुत पुराना है लेकिन आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH आए। और तब तक के लिए दिल चाहता है का, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, रेशमा जी की रिक्वेस्ट पर राइट योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।